0: उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं, तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे कबूल न किया।
1: कुल लौ अन्तुम तमलिकून

بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما

वैसे हर नौ निहाल लोगो सारियां तो वध सोना मना दलाल लोगो सारियां तो वध सोना मना दलाल लोगो आमना दे बाल जया कौन होवेगा उस बेमिसाल।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार, इसीलिए

जी समय प्रोग्राम है रोशन सुबह मां जो मेज़बान नेमत अल हजूणे जो समय अवां खे बुधाईंदासीं त जिन भी दोस्तन पंहिंजो सवाल हिन हफ़्ते जो नोट नाहे कयो त उहो बिल्कुलु असां अव्हांखे वरी बि सवाल नोट करे पिया छो त असांजो जेके पंहिंजे सिंध जो समूरो जेको नेटवर्क आहे सिंध जो तमामु वॾे में वॾो नेटवर्क आहे उहो आहे जी एफ एम 88 जो त असांजा कमर्शल्स बि तमामु हलंदा आहिनि घणा त उन हवाले सां कुझु दोस्तनि जेको आहे सो गुज़ारिश कई आहे त असां कमर्शल जे करे असां जेको आहे सवाल न आहियूं नोट करे सघिया त सवाल नोट कयो असांजो सवाल आहे त गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे जी हा गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे त साईं जा असांजे सवाल जो सही जवाबु तव्हां मोकिले सघो था एस एम एस ज़रिए एस एम एस करण जो आसान तरीक़ो आहे तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते एल आर के लिखी यानी लाड़काना थी वेंदो एल आर के माना लाड़काना स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था असांजी जी एफ एम 88 जी आई डी आहे असांजो फेसबुक पेज आहे त हुन ते बि सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाबु असां ॾे मोबाइल जे वसीले कॉल करे बि नोट कराए सघो था असांजो मोबाइल नंबर आहे 0332132288 ॾहें बजे मोबाइल स्टूडियो में आन कंदासीं असां तव्हांजे सवालनि जा सही जवाब बिल्कुलु लिखंदासीं असांखे तव्हांजे जवाब जो इंतज़ारु ओसियलु रहंदो ऐं साईं जा असां तव्हांखे वरी अगस्त महीने जी अॼु 31 तारीख़ आहे यानि आख़िरी तारीख़ आहे अगस्त महीने जी अगस्त महीने जे हवाले सां असां अव्हां ताईं थोरी मालूमात पहुचाईंदासीं कुझु दोस्तनि जी मालूमात में इज़ाफ़ो थींदो त साईं मुंहिंजा अगस्त महीने जे हवाले सां कुझु मालूमात इहा बि आहे त 4 अगस्त 2000 ते यानि कचहरी जो मोर फनकार महमूद सिद्दीक़ जो विछोड़ थियो ऐं 4 अगस्त 1967 ईस्वी ते नौजवान शाइर ज़ाहिद दारा अबड़ो यानि दारा हुन जो लक़ब हुयो तख़लस हुयो ज़ात जो अबड़ो हुन जनमु वरितो ऐं 4 अगस्त 1991 ते नौजवान शाइर इरफान महदी जो लाॾाणो थियो ऐं साईं जा अगस्त जेको महीनो आहे ईसवी साल जो 8 महीनो आहे ऐं हिन अगस्त महीने ते उहो नालो मशहूरु रूमी हुकुमरान अगस्टस जे नाले ते पियो ऐं अगस्टस जी लफ़्ज़ी माना आहे दाना हिन महीने दौरान उत्तर अधु गोल में ॾींहं नंढा थींदा आहिनि ऐं उनजे बरकस ॾखण अधु गोल में ॾींहं वॾा थींदा आहिनि हिन महीने में मींहं बि वसनि था ऐं हिन महीने में 31 ॾींहं थींदा आहिनि त साईं मुंहिंजा इहा अगस्त महीने जी मालूमात हुई त हुन जो नालो कीअं पियो मशहूरु रूमी अगस्टस मशहूरु जेको आहे हुकुमरान हुयो उनजो नालो हुयो जंहिंजे करे अगस्त नालो हुन ते पियो त हीअ मालूमात तव्हांखे ॾिनीसीं हाणे वरी हिकिड़ो ख़ुशि नगम ॿुधूं पिया अव्हां जे नाम पिया कयूं

0: सारे इल्ज़ाम हेठि पिटो क़तल जवाबदार अब्दुल्ला सुंगरो पंहिंजी धीअ बशीरा सुंगरो ऐं नौजवान अल्ताफ सुंगरो खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

चुमियूं पेरनि खे ॾींदो फतो नुसरत इंशा अल्लाह भई चुमियूं पेरनि खे ॾींदो फतो नुसरत इंशा अल्लाह भई सवें फेरा खणी।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
3: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी
4: आई अदी अज त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अचे
3: छो न ख़ुशि थिया अदी जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं
4: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
7: अस्सलाम वालेकुम अदा
8: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
7: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
8: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
10: 0301-399-2836
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94 अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

जी आसिम जा प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह, ऐं रोशन सुबुह में जेको मां तव्हांखे अॼु जो सवाल नोट करायो हुयो त गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते मल्हायो वेंदो आहे, त उहा तारीख़ आहे 30 अगस्त, या जेका कल्ह तारीख़ गुज़री चुकी त उहो 30 अगस्त जो कल्ह हिकु ॾींहुं हुयो, अॼु 31 अगस्त आहे। ऐं 31 अगस्त जे हवाले सां अव्हां ताईं कुझु मालूमात बि पहुचाईसीं अगस्त जे हवाले सां, पर बहरहाल सवाल जो जेको सही जवाबु हुयो उहो हुयो 30 अगस्त। उन हवाले सां साईं जा हर इंसान हर अहसानमंद इंसान खे उहो अहसासु ज़रूरु तड़पाईंदो आहे त जिन जा मिट माइट गुम थी वञनि था तन मथां छा न गुज़रंदो हूंदो, तकलीफ़ हूंदी, परेशानी हूंदी, हुननि जो हिकु हिकु पल कंहिं अज़ाब खां घटि न हूंदो। ऐं ॿिए तरफ़ जेकी माण्हू गुम थी वञनि था या गुम कया वञनि था उहे बि तमामु वॾी अज़ियत भोगींदा हूंदा। उन करे 30 अगस्त ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गुम थी वियल माण्हुनि ऐं हिरासत में वरितल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि। हिन ॾींहुं पहिरियों भेरो लातीनी अमेरिका जे मुल्क स्टारिका में खुफ़िया हिरासत में जे ख़िलाफ़ कमु कंदड़ हिकु तनज़ीम पारां सन 1981 ईस्वीअ में मल्हायो वियो, जिन खां पोइ ही ॾींहुं हर साल 30 अगस्त ते मल्हायो वेंदो आहे। त साईं जा वाक़ई अहिड़ा माण्हू जेके गुम थी वेंदा आहिनि या अहिड़ा माण्हू जेके गुम कया वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे घर मां उहे माण्हू गुम हूंदा, ऐं हिकिड़ो माण्हू वफ़ात करे वञे थो, हिकिड़ो माण्हू हीअ दुनिया छॾे वञे थो, त चवंदा आहिनि त उहो हिकु सूर आहे। पर जेको माण्हू गुम थी वञे थो पर जेको ॿारड़ा नंढड़ा ॿारड़ा बि गुम थी वेंदा आहिनि ऐं न लभंदा आहिनि त उन्हनि जो सूर सॼी ज़िंदगी न वेंदो आहे। इहो उन अबेमण खां पुछो, इहो सूर उन पंहिंजो वालदेन खां पुछो, मिट माइट खां पुछो, जंहिं चवंदा आहिनि त हंधु उहो सड़े जिते बाहि भरे, छो त जंहिंजा जिगर पाण खां परे हूंदा आहिनि ऐं सॼी ज़िंदगी उहे नाहिनि मोटंदा, गुम थी वेंदा आहिनि या गुम कया वेंदा आहिनि। पर ख़ासि करे असां वरी ॻाल्हि कंदासीं नंढड़नि ॿारनि जी, जेके वीचारा बेसमझ हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो उन्हनि जी का उमिरि न हूंदी आहे, गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा हूंदा आहिनि जेके वीचारा गुम थी वेंदा आहिनि, न लभंदा आहिनि, के वीचारा किरी पवंदा आहिनि किथे पाणीअ में, कंहिं गटर नालीअ में, या बहरहाल कंहिंखे को नांग भला खाई वेंदो आहे, कंहिंखे को कुतो बिलो चके विझंदो आहे। त कोशिशि कयो पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त कयो त बहितरु आहे। पर गुम थियल ॿार ऐं गुम थियल माण्हू ऐं गुम कयल माण्हुनि जो जेको अहसासु आहे उन्हनि खे थींदो आहे जंहिंजे घर जा भाती हूंदा आहिनि।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां दोस्तन के पंहिंजे नालनि जो ओसीड़ो कुझु दोस्तन जवाब सही न आहिनि, कुझु दोस्तन जवाब ग़लति बि न आहिनि, त कुझु दोस्तन महिनत पंहिंजी कोशिशि करे उको दुखो बि आयो आहे जंहिंजा जवाब ग़लति थिया आहिनि। त असांजो पहिरें नंबर ते दोस्त अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, नूर अमन सोलंगी, उन्हनि सां गॾु आहे अरबाब कुंभार मीरपुर ख़ास खां दोस्तनि जवाबु ॾिनो, ऐं मोहम्मद पिंजल लांगा, फ़हीम लांगा ऐं नंढड़ी सनूबर लांगा, राज़ी देरो ज़िले खैरपुर खां, क़ुर्बान ख़ासि के अली झंडो मरी खां दोस्त जवाबु ग़लति ॾिनो, रांझन कोरी, अली कोरी, फरहान कोरी, लाल चंद ऐं ख़ान मोहम्मद जूणी जो कोरी ॻोठ खां, मोहम्मद शरीफ़ छुटो, नादर ख़ान छुटो, दरेजी बलोचिस्तान खां, ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां, इक़बाल लाशारी, सोराब मंगरियो, फरहान मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो, ॻोठ सचिरणो मंगरियो, लॻे बकापुर खां, गुलाब ख़ान कुंभर, शोएब ग़ुलाम रसूल कुंभर, उन सां गॾु आहे नादर ख़ान कंगो ॻोठ कंगन खां, चनेसर भेण, आज़ाद भेण मोरे खां, ऐं फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठ आगा ख़ान जतोई खां, अहमद नवाज़ मक्सी, नादर अली मक्सी, कुबो सईद ख़ान खां, अहसान अली भुट्टो ॻोठ जवान भुट्टो लॻे नाउंदुर खां, यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां जवाबु ॾिनो, दुरुस्त जवाबु ॾिनो, उनजी महिरबानी। ऐं सही जवाबु ॾियण वारा दोस्तनि अल्ताफ़ गाढ़ी बलोच कराची खां, अमर रमेश लाल, कृष्ण लाल, मोहम्मद अमीन, ज़फ़र सादिक शेख ऐं इसरार अबड़ो, मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हालेपुर स्टाप मीरपुर ख़ासि खां, रेहाना ख़ान बखर खां, बरकत अली जम्भाली बलोच, जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां, ज़ोहेब कटबर, बिलाल कटबर, ज़िनलाब्दीन ऐं उन सां गॾु आहे उनजी भेनरुन सीमा ऐं रुखसाना रहमतपुर लाड़काणे खां, ऐं हाफिज़ मुनीर खोसो लाड़काणे खां, यादि कयो उनजी वॾी महिरबानी। ॻोठ मोलेरण माशी लॻे वॾनि मरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीर अब्बास ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ हसु जतोन खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसर लाइ जतोई, ॻोठ अहमद ख़ान लाशारी धूणनि खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर ख़ान मक्सी ऐं नाराज़ टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां, एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फ़ौजी इरशाद अली मैसर, एजार फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं हरसा जी घड़ी कोरकणी खां, सूमर फ़क़ीर कोरकणी। त समय आख़िरी नगमो अवां दोस्तनि जे नाम

जी सभिन गुलाबू लाल जी इन ख़ुश नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजे पुॼाणे ते। हयाती बख़ैर वहां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी, तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरानी मेट ला के तबाह करे छो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले की तस्दीक कदे है। ईरानी मेट ला के तबाह कर है। ईरानी सदर मसूद पजान है ते खिते में बदमनी अदम इस्तेकाम कहे भी मुफाद में ना है। तेहरान जंग न थो चाहे पर जारियत जो मुंह तोड़ जवाब दिनो विंदो।
2: लखी गुलाम शावे जो पीओ कारें इल्जाम हेठ धी ए नौजवान के कतल कर छो। जवाबदार गिरफ्तार गोठ मामूद बाग में जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो बुशरा अल्ताफ सुमरे के कतल कयो। इतलात पुलिस वाके वारे हंध पहुंची जवाबदार अब्दुल्ला के गिरफ्तार करे वरतो। कारें इल्जाम हेठ कतल थियल जोड़े जा लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: मदे जी वेझो पुराने तकरार तां बिन धुरिन में जेड़ो फायरिंग एक नौजवान मारजी वयो। गोठ जतन जे कड़ी में जमाली बिरादरी जे बिन धुरिन में पुराने तकरार तां जेड़ो थियो। जेड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में नौजवान अली हसन जमाली मौके ते मारजी वयो। मक्तूल जे वारसन जो चवण आहे त रजब जमाली जे धुर नौजवान के कतल कयो आहे। पुलिस जो चवण आहे त धुरिन में पुराने तकरार तां थियल जेड़े में नौजवान मारजी वयो आहे। जांच करे रहिया आहिनि।

0: नेपाल में तबाही मचाईंदड़ बोड के 6 ॾींहं गुजरण बावजूद गुम थियल 4,000 खां वधीक माण्हुनि जो अञा पतो न पियो। बोड सबब फोत थींदड़नि जो अंग बि 900 खां वधी वियो। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि बोड दौरान गुम थींदड़नि में 200 स्कूली शागिर्द बि शामिल आहिनि। बोड सबब गुम थियल परॾेहनि जी बि ॻोल्हा जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003। असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याना पर ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जी जान चारो मसालो, जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. शराहबानी और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों में या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे जिंदगी गुलजार है. रियाम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

ओके जी प्रज्ञा, मैं आप मुझे जो तरीके का मैसेज कर सकती हूँ, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, फेसबुक पेज है दैट इज www.facebook.com/GFM88K पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट, जाहिर है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर पाएंगे। तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113।

इसी के साथ हम प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग, और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

हलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड जा मर्ज़ फादे जी अल्सर बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाजो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन वज़न जो न वधण उन्हनि जो कामयाब थियो राब्ते लाइ 0301 91 8051।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03

0: 0033-85569.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: ये सिंगर क्या है और टाइटल क्या है गाने का?
1: ये शिवम हिरानी का सिंगर है और टाइटल है काले रंग दा होए या बुरे रंग दा होए।
0: सॉरी, आपकी आवाज, आपकी आवाज भी डिस्टॉर्शन आ रहा है,
1: काले
0: आपकी आवाज भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, थोड़ा सा सही से बताएं प्लीज।
1: रंग दा हो मतलब टाइटल है काले रंग दा हो या बुरे रंग दा हो बस होवे वफा वाला दा जिला हाल में इश्क मलंग दा।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: हमारे दोस्त के में सलाम देने का आपे सावल साहब सुन रहे हैं, यहाँ पे तावला मुरे साहब सुन रहे हैं और मोहम्मद कासिम साहब और शमी जी साहब और सरदार दो मिस्टर और जो भी सुन रहे हैं उनको सलाम। लेकिन ये गाना जो है प्ले जरूर करना, मेरे पहले वाला गाना भी प्ले किया
0: जी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: जीए सक्कर एफएम 88 सक्कर की खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे

0: क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जहर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 03073592120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. और गाना हमारा हो रहा है प्ले, और जब भी हम ऐसा कुछ प्ले करने जाते हैं या करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी देर लग जाती है लेकिन हो जाता है.
1: तमाम उम्र तुझे

बाकी साथ साथ आज के टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने कह के दिखाना है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये कहेंगे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है. कंफ्यूजन नहीं रखना और बिना कंफ्यूजन के कहना है. अगर बिना कंफ्यूज हुए कहेंगे तो अच्छे तरीके से टंग ट्विस्टर कह पाएंगे. तो इसको प्रैक्टिस करना अब आप शुरू करेंगे और हम चलेंगे एक और सॉन्ग की तरफ. और सॉन्ग के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबुल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दिफ़ा वार वज़ीर ख़्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनूर इस्तंबुल पहुतल। इजलास में सऊदी अरब ऐं तुर्किया जा परॾेही ऐं दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक थींदा। फील्ड मार्शल तुर्किया जे सरकारी दौरे दौरान अहम मुलाक़ातूं बि कंदो।
1: कुझु अरसे जी ख़ामोशी बाद अमेरिका ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमेरिका जो ईरानी बेट लाज ते मिज़ाइल हमिलो, ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं यूएज में मौजूद अमेरिकी अॾनि ते वार। आबनहरमुज़ में अमेरिकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमेरिकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनहरमुज़ में बारूदी सुरंगू विछाइण वारी कोशिश रोकण लाइ ईरानी लाक बेट ते हमिलो कयो। पासदार इनकलाब अमेरिकी हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमेरिकी फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं यूएई में मौजूद अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनहरमुज़ मथां उॾाम कंदड़ अमेरिकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे।
0: ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त खिते में बदअमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिं बि मफ़ाद में न आहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटरोड़ जवाब ॾिनो वेंदो।
1: ईरान जंग अमेरिका खे थकाए विधो। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत ट्रंप इंतिज़ामिया खे ख़बरदार करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट पंहिंजी हिकु रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई खे ब्रेक ॾिनी वई आहे। अमेरिकी फ़ौज जे मज़ी जंग सलाहियत मुतासिर थी सघे थी। अमेरिकी फ़ौजी क़यादत मूजिबि ईरान सां 6 महीननि खां जारी जंग फ़ौजी वसीलनि ते वॾो बार बणिजी चुकी आहे। हिक ई तकरार में फोर्सिस खे मसरूफ़ रखण सां अमेरिकी अस्करी सलाहियत खे ख़तरा थी सघनि था।
0: सिंध असेंबलीअ जो अहम इजलास अॼु थींदो। नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट्स ते बहस लाइ पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बहस कयो वेंदो।
1: बलूचिस्तान में भारतीय फितने ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलूचिस्तान जे इलाइक़े वाश्क में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते फोर्सिस ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी विया दहशतगर्दनि पुलिस स्टेशन ऐं कस्टम हाउस ते हमले में मुलविस हुया।

लखी गुलाम चावे जो पीउ पारां इल्ज़ाम हेठि धीउ ऐं नौजवान खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ महमूदाबाद में जवाबदार अब्दुल्लाह सुमरो बुशरा अल्ताफ सुमरे खे क़तल कयो। इतला ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची जवाबदार अब्दुल्लाह सुमरो खे गिरफ़्तार करे वरितो। कार ऐं इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल जोड़े जा लाश इस्पताल मुंतकिल।

0: कराची जे डिफेंस वारे इलाके में औरतन जे झेड़े वारो मामलो सिंध हाई कोर्ट ताईं पहुंची वयो। तशद्दुद जो शिकार औरत ऐं संदसि भाउ तशद्दुद कंदड़ औरत पारां दाख़िल करायल केस ख़तम कराइण लाइ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त दरख़्शां थाणे ते मरियम रज़ा जे मदद में दाख़िल FIR ग़लति कूड़ी ऐं गैर क़ानूनी आहे। केस ख़तम कयो वियो। DIG ॾखण बे ॿिन्ही धुरियुनि खे अॼु पंहिंजे ऑफिस तलब कयो आहे।
1: मदा जी वेझो पुराणी तकरार तां ॿिन धुरनि में जहिड़ो फायरिंग, हिकु नौजवान मारिजी वियो। ॻोठ जतन जे कड़ी में जमाली बिरादरीअ जे ॿिन धुरनि में पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। जहिड़े दौरान फायरिंग जे नतीजे में नौजवान अली हसन जमाली मौके ते मारिजी वियो। मक़तूल जे वारसनि जो चवण आहे त रजीब जमाली जे धुर नौजवान खे क़तल कयो आहे। पुलिस जो चवण आहे त धुरनि में पुराणे तकरार तां थियल जहिड़े में नौजवान मारिजी वियो आहे। जांच करे रहिया आहियूं।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: Okay, next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Hello. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Main Larkana se.
0: Larkana se kaun?
1: Main Jamila.
0: तहमीना अब मैं बोलती रहेंगी तो मुझे थोड़ी पता चलेगा आप कौन है जब तक आप नाम नहीं बताएंगी. तो तहमीना कैसी हैं आप? ठीक है?
1: हाँ ठीक हूँ. आप ठीक हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. प्रोग्राम सुनती हो तहमीना?
1: हाँ मैं सुनती हूँ.
0: तहमीना का मतलब क्या है वैसे?
1: हैं?
0: तहमीना का मतलब क्या है?
1: मेरा मतलब?
0: हाँ आपके नाम का मतलब क्या है?
1: कोई भी मतलब नहीं है.
0: कोई भी मतलब नहीं है. मतलब कोई मतलब होता है ना नाम का. जैसे अब मेरा नाम ही रुखसार तो मेरे नाम का मतलब
1: है. मुझे
0: मेरे नाम का मतलब पता है?
1: हाँ?
0: अपने नाम का नहीं पता. चले खैर कोई बात नहीं. तहमीना मुझे ये बताओ कि टंग ट्विस्टर बोलना है? सुना है टंग ट्विस्टर?
1: हाँ टंग ट्विस्टर बोलना नहीं है.
0: बोलना नहीं है? क्यों नहीं बोलना? ट्राई तो करें. ट्राई तो करें. सारे सुनने वाले कहेंगे तहमीना को तो आता ही नहीं है. तहमीना से तो होता ही नहीं है. तो फिर मैं क्या कहूंगी? हाँ
1: अच्छा
0: हाँ तो बोले ना. हेलो तहमीना. तहमीना किधर? हेलो. ओके तहमीना भाग गई. लेकिन बुरी बात है, भागना नहीं चाहिए. 0000113488 के ऊपर एक और कॉलर. हेलो.
2: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? वफा तारिक जमील जतोई. आपकी आवाज को क्या हुआ था? शुरू में किसी और को कॉल दी थी या आपने ही निकाली थी आवाज?
2: जी मेरे से निकल गई थी.
0: आपसे निकल गई थी?
2: जी जी
0: माशाल्लाह. औरतों की आवाज निकाल लेते हैं.
2: नहीं नहीं भूल गए थे.
0: अच्छा भूल गए थे. भूल से निकल गई. अच्छा मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी जी सुनते हैं.
0: तो टंग ट्विस्टर बोलेंगे?
2: नहीं ये नहीं आता.
0: ये नहीं आता. चलें फिर अल्लाह हाफिज. थैंक यू. 0300113488. इस सेगमेंट में वही कॉलर जो टंग ट्विस्टर बोलेंगे. नेक्स्ट कॉलर. हेलो
3: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द. क्या हाल चाल?
3: बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और ये वो वाहिद कॉलर है जो हमेशा इसी सेगमेंट में कॉल करती है और इसी सेगमेंट के लिए आती है और हमेशा विन भी करके जाती है ना सरदर्द?
3: बिल्कुल.
0: है ना? तो कितनी मतलब के अच्छी बच्ची है सरदर्द.
3: देख ली ना मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ. फरमाबरदार.
0: चलो फिर इसी बात पे टंग ट्विस्टर बोल दो. स्टॉप. हमारे पास वो ऑप्शन आता है ना 2x पे लगा के सुनने और देखने का. मुझे लग रहा है सरदर तुम्हारी कोई 4 या 6 एक्स पे लगी हुई है और उस पे जो है ना तुम बोले जा रही हो. मतलब क्या स्पीड है, क्या बात है.
3: आपका सुन के तो मैंने बोलना सीखा है.
0: इतनी तेज तो मैं भी नहीं बोलती. तुम तो मुझसे भी आगे जा रही हो. चलो खैर अच्छी बात है. अच्छा मुझे बताओ और कुछ कहना है?
3: अल्लाह
0: थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. 0300113488.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
5: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
6: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे।
5: भला मुखे भी बुदाए केड़ी गाल आहे।
6: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
5: छा छा?
6: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
5: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
6: साईं रेडियो थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अज।
5: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
6: हा साईं हा।
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ओगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आकर मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में गर्ल्स के थ्रू, क्योंकि हमारा सेगमेंट है जी बोलो तो माने. और बोलो तो माने भाई टंग ट्विस्टर है आज का. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है, ये बोलेंगे. और जो बंदा ये ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा हमारे सेगमेंट को. ठीक है, तो ये करेंगे हम अपने भी आजमाए. और इसी के साथ हम गाना भी चेंज करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल जो कि हम प्ले करेंगे और साथ में कॉल्स भी रिसीव करेंगे. सो कॉलर नेक्स्ट. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: SRH चुरोड़ी से.
0: SRH टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे?
1: रिपीट करना एक बार.
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गए. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. चाबा नहीं है, चाबी है.
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस चाबी की ताली उस चाबी का ताला. जिस
0: नहीं, ताला चाबी और मतलब गलत हो रहा है आपका.
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
0: यस,
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जिस ताले की चाबी उस ताले का ताला.
0: चले अच्छा था, अच्छा था. और कुछ कहेंगे? ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. उस ताले का चाबा.

0: बिजी है सर।
1: चाबी के साथ साथ चाबा भी मार्केट में आ गया, वाओ।
0: हम ना मिल सके।
1: अच्छा नेक्स्ट कॉल लेंगे हम। हेलो,
2: वालेकुम अस्सलाम बाजीर सर, कैसी हो? ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ। कौन बात करे, कहाँ से?
2: मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, बाजीर सलाम कमरा।
1: मोहम्मद आलम पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: नहीं नहीं, दूसरी बार कॉल करिए। पहले बार कही थी तुम्हारे प्रोग्राम में, जिंदगी गुजार है।
1: चलिए जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
2: सुना तो है, बोल नहीं सकता।
1: बोल नहीं सकते? क्यों बोल नहीं सकते? बोलना नहीं आता आपको?
2: बोलना आता है बाजी।
1: तो फिर
2: बस ये टंग थोड़ा भारी है।
1: भारी है? भारी तो नहीं है, वजन तो है ही नहीं इसमें।
2: वजन है, तालो और चाबी है ना।
1: वाह, क्या क्या लॉजिक निकाला है आपने। वैसे और कुछ कहेंगे?
2: बस जो सुन रहे हैं उसकी सलाम, आपको सलाम, तुम्हारे टीम को सलाम। ओके, अल्लाह
1: हाफिज़। थैंक यू। गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और गाने के साथ साथ आगे मूव करेंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ईरान जंग अमेरिका के थकाए विधो अमेरिकी फौज क़यादत ट्रंप इंतजामिया के खबरदार करे छो अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पेंजे रिपोर्ट में जानायो आहे त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई के ब्रेक डिनी वही है अमेरिकी फौज के मजबूत जंग सलाहियत मुतासर थी सके थी अमेरिकी फौजी क्यादत मूजिब ईरान से छह महीनों का जारी जंग फौजी वसीलन से वो बार बनी चुकी है एक ही तकरार में फोर्सिस के मसरूफ रखने से अमेरिकी अस्करी सलाहियत के खतरा थी सकन था।

0: सिंध असेंबली जो अहम इजलास अज थींदो। नवन सूबन ऐं इंतकामी यूनिट्स ते बहस लाइ बीबी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिट ते बहस कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रिकग्नाइज़ सहकारी तंज़ीम जे सरबराही इजलास में शिरकत लाइ किर्गिस्तान रवानो। वज़ीर आज़म में किर्गिस्तान क़यादत सां बि मुलाक़ातूं कंदो। वज़ीर आज़म शिरकग्नाइज़ सहकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब में तेज़ी सूरतयाल ते आगाह करण सां गॾु अमुन ऐं इस्तेहकाम वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरींदो। सिंध हुकूमत मलीर जे एजुकेशन सिटी में ॾेही ऐं परॾेही कंपनियुनि लाइ आईटी सिटी क़ाइम करण जी रिथाबंदी करे छॾी। 1070 एकड़ खां वधीक ज़मीन ते आईटी कंपनीज़ लाइ सनअतूं ऐं आबादियूं क़ाइम थींदियूं। ॾेही तोड़े परॾेही कंपनियुनि 700 खां 800 मिलियन डॉलर जी सीड़पकारी करण जो वाइदो बि करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी जे ज़ोन में डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइम कया वेंदा। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि लाइ ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल सनअतनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो। आईटी सिटी लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारो अमल बि जारी। मनसूबनि जी बाज़ाबता इफ़्तिताह जी तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो इम्कान। सिंध काबीना मलीर ज़िले में एजुकेशन सिटी खे वधीक 5,987 एकड़ सरकारी ज़मीन ॾियण जी गुजगो में मंज़ूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर आसिम हुसैन जी दरख़्वास्त ते मलीर ज़िले जे देहे कोठड़ो में 4,000 एकड़ ज़मीन ॾिनी वई। देहे ढाऊं में 925 एकड़, देहे जोड़जी में 500 एकड़ ऐं देहे आबादार में 562 एकड़ सरकारी ज़मीन एजुकेशन सिटी लाइ ॾिनी वई। 5,987 एकड़ ज़मीन में मालियत 150 अरब 43 करोड़ रुपया आहे, जेको फ़िलहाल सिंध हुकूमत जो नाणो खातो भरींदो। सेनेट कमेटी जो पिंज अस्पताल में ख़ुसूसी इजलास। कमेटी मेंबर ऐं सिहत वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बि इजलास में शरीक। कमेटीअ खे पिंज साहने ऐं खयनि क़दमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। कमेटी चेयरमैन चयो आहे त अहिड़ियूं तजवीज़ूं ॾियणु चाहियूं था जंहिं सां अहिड़नि साननि खे रोके सघिजे। बलूचिस्तान में भारतीय फितने ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन, ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। सेक्रेटरी ज़रियन मौजूदु बलूचिस्तान जे इलाइक़े वाश्क में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते फोर्सिस ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द पुलिस स्टेशन ऐं कस्टम हाउस ते हमले में मुलविस हुया। लखी गुलाम शाह वेझो पीउ कार इल्ज़ाम हेठि धीउ ऐं नौजवान खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ महमूदाबाद में जवाबदार अब्दुल्ला सूमरो बुशरा ऐं अल्ताफ सूमरो खे क़तल कयो। इतलाउ ते पुलिस वाके वारी हंधि पहुची जवाबदार अब्दुल्ला सूमरो खे गिरफ़्तार करे वरितो। कार इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल जोड़े जा लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े में औरतुनि जे झेड़े वारो मामिलो सिंध हाईकोर्ट ताईं पहुची वियो। तशदुद जो शिकार औरत ऐं संदसि भाउ तशदुद कंदड़ औरत पारां दाख़िल करायल केस ख़तम करण लाइ सिंध हाईकोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त दरख़्शां थाणे ते मरियम रज़ा जी मथे दाख़िल FIR ग़लति कूड़ी ऐं गैर क़ानूनी आहे। केस ख़तम कयो वञे। DIG ॾखण जे ॿिन्ही धुरियुनि खे अॼु पंहिंजी ऑफिस तलब कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस

कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रे जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
2: जीजा ढोर चारो मसालो आज़मेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार, 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हां भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ही थो वठी अचा।
4: जीजा चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब तंदर तमाम कुछ रदमासों में सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामुअलैकुम। के समंदर चाहतों की बारिश और लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नी से डॉक्टर समी से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, इनसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरप्रकाश मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती। बिल्कुल जी, तो इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया, और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम में, आप प्यारे प्यारे लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद। इसी के साथ साथ जरा आप भी अपना तारीफ करवाएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल भी बताएंगे। सो डियर लिसनर्स, अंत की फहालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। बिल्कुल जनाब, से पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ बहुत ज्यादा वाली बातों के साथ, और खूब सारा आपका सर खाने वाले, और इसी के साथ साथ आपको सुनाएंगे कि बहुत अच्छे अच्छे गाने भी, यानी कि एंटरटेनमेंट भी होगी, ऐसे कैसे छोड़ेंगे बाबू भाई। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जनाब जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए और फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज अली रे अली सदर अली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ। तो बहुत प्यारी सी नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती, आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक का, साथ रहिए और साथ दीजिए।

ओके तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नात आपने यहाँ पर सुनी और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब अपने होने का एहसास दिलाने वाले हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर आज के प्रोग्राम में सवाल की बात की जाए तो आज मैं काफी दिनों के बाद जो है ना प्रोग्राम में आप लोगों से पहेली पूछने वाली हूँ और पहेली जो होगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है कि आपने मुझे बताना है, बिल्कुल जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सारे लोग मुझे बताएं कि आपको ये बताना है कि वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती या फिर नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल जी, सवाल यही है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकती। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, वहां पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जैसे आप लाइक करेंगे शेयर कर देंगे, और अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो क्या ही बात है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पर, और जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम कहा जाता है। आपने क्या करना है, आपने बस टॉपिक को फॉलो करना है और बताना है कि आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा है, और अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी बता देंगे क्योंकि आपकी पसंद के गाने भी लगाए जाते हैं जी प्रोग्राम के अंदर। तो क्या सोच रहे हैं जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती। हाँ जी हाँ जी, बताइए मुझे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जनाब, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग GFM 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती, सुनते रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक, तो साथ रहिए और साथ दीजिए।

0: It's 1:30 p.m. This time.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हाँ साईं गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरन खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हीअ चारो ढोरन जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन था, गोश्त सां गॾो गॾ खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीअ ते था बुधाइन, बुध अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

को टॉपिक आ रहा है तो मैसेज कीजिए अगर आप वैसे भी मैसेज करने वाले हैं तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें कई मरतबा ऐसा हो जाता है आप मैसेज तो कर देते लेकिन टॉपिक का दूर दूर तक कोई जो ना आता पता ही नहीं होता तो वही टॉपिक फॉलो कर लिया करें अगर आप मैसेज कर ही रहे हैं तो अदरवाइज अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वेलकम एंड खुश आमदीद ओके जी तो प्रोग्राम में आपकी पसंद के गाने भी लगाए जा रहे हैं और गानों से याद आया कि प्रोग्राम में जो है ना मैंने अच्छे अच्छे गाने सेट कर दिए हैं फिलहाल तो अभी इस लिंक में आप मेरी पसंद के गाने सुनेंगे बाकी जब हम दूसरे लिंक में आएंगे तो उसमें आप लोगों की पसंद के गाने चलाएंगे ठीक हो गया और यहाँ पर जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं बिल्कुल आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो मैसेजेस की जान भी आ जाते हैं और जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिला है वो मिला है हमें जी इरम का और इरम क्या कहती है आप ही अब मुझे भी बस आरजे बनना है आरजे बन जाइए जी आपको किसने रोका वैसे आप बन जाइए अच्छी बात है आप बहुत ज्यादा बोलती हैं मुझे ये लगता है तो जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वही आरजे बनने के काबिल होते हैं आप बन सकती हैं वैसे आपने जो सैलरी के हिसाब से बात करी है वो ऐसा कोई सही नहीं है बस अगर आप ऐसा है कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए वाली सीन बन रहा है तो बस उसी हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है अदरवाइज जो टाइम से काफी टाइम से जैसे मुझे काफी टाइम हुआ है तो उनके लिए अच्छा खासा है बाकी अगर नए से जो लोग शुरू करेंगे तो 10-15 हज़ार से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है और उसके अलावा चाचा खालिद हमें सुन रहे कहते हैं अजुबी सॉन्ग जी रुकेस्ट आई एज यूजुअल बिल्कुल चाची जो गानों हलाई नासी चाचा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुरुकेसी हैं आप बेटा माय हेल्थ इज नॉट वेल प्रे फॉर माय गुड हेल्थ बिल्कुल जी आपके लिए दुआ करेंगे आप जल्दी से ठीक ठाक हो जाइए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए और ये हमारे साथ हैं जी कश्मीर से जुबेदा बलोच हमारी प्यारी भाभी हाय सिद्रा नाइस यो प्ले प्यार कबू दिल खोले बाय ममताज मलाई ओके ओके ममताज मलाई सुनाते हैं आपको और हमारे साथ है सिकंदर अली मातली से ओके जी सिकंदर अली हमें सुन रहे हैं मातली से तो सिकंदर अली को हम वेलकम कहते हैं उनके अलावा मजहर अली हमारे साथ है मजहर अली टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपने जो टॉपिक का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है यदि आप ही प्लीज प्ले ओएसटी अच्छा चलें बिल्कुल ये ओएसटी आपको सुनाएंगे और आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा कश्मीर से अखलाक भाई हमारे साथ है नाइस शो आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है क्या बात है और चाचा खालिद कहते हैं बेटा टॉपिक आंसर हाँ हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब और मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा होशियार होते जा रहे हैं सारे लोगों को बोल रही हूँ जो भी सवाल पूछो बस आपको जवाब पता होता है अच्छी बात है वैसे ये और हमारे साथ हैं गुल हसन अच्छा यो शायद अगते तव्हां पंहिंजे ॻोठु नालो लिखियो आहे मूंखे इन खे सही तरह सां पढ़ण न पियो अचे या अलाए शायद तव्हांजे ॻोठु नालो माज़रत कयूं था अब्दुल रहमान कलोड़ो से शो सुन रहे हैं ओके जी और अच्छा आपने गाना लिखा है प्लीज बाजी फायजा अली का सॉन्ग सुनाना फरमाइश है मेरे बेटे आजाद खान और आमिर खान मोहम्मद रिजवान की ओके जी ओके सब प्यारे लिसनर्स को वेलकम कहा जाता है जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे साथ इरम कहती हैं यार आपकी भी नहीं नहीं आप थोड़ा को ज्यादा ही जा रही हैं इतना ज्यादा नहीं है मैंने पहले ही बताया ना होने से कहते होना बेहतर है वाला सीन है और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है चलें भाई इतने सारे मैसेजेस एक साथ ही तो नहीं पढ़ूंगी ना ऐसा करते हैं यहाँ पर एक अदद आप लोगों के लिए गाना लगा लेते हैं गाना सुनेंगे जी और गाना हम सुनने वाले हैं ये वाला शानी अर्शद की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती देखते हैं कहाँ तक चलती है आप कहाँ तक साथ देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया, और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है, हम वो गाना भी एंजॉय करेंगे। और ये हदीका कियानी जी की आवाज में गाना होने वाला है, इतना प्यारा गाना है ना, क्या बात है, सुनेंगे तो आपको खुद ही बड़ी चस्क आ जाएगी। तो गाना सुनिए और साथ साथ आप हमें जरा टॉपिक का जवाब बताते जाइए, आपको क्या लगता है वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकती।

नहीं जी क्या बात है, हदीका कियानी जी के गानों की ना मतलब एक अलग ही बात होती है. जो भी गाना आप प्ले करें, जो भी गाना आप सुने, तो बस ऐसा लगता है ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा था जो हमने पहले सुना था. क्योंकि जितने भी गाने हैं ना ये इतने मजे के होते हैं, ये बस क्या ही बात है. और इंजॉय करें आप, और साथ साथ आप बिल्कुल जी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. लेकिन एक बात है जरा आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. ऐसा होता है ना, बहुत से लोग हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं जो कुछ टॉक्सिक टाइप से होते हैं, यानी कि जिनका काम सिर्फ ये होता है कि हमारी जिंदगी में जहर घोलना होता है बस. उनको और किसी भी चीज से मतलब और मकसद नहीं होता, बस ये होता है कि वो आपकी जिंदगी में जहर घोले. और वो तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह से ये काम किया जाए, किस तरह से किया जाए. और जब उनको और कुछ नहीं मिलता और कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाते, तो वो उनका अगला जो वार होता है वो दूसरों की नजर में आपकी इज्जत खराब करना होता है. क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि जब वो आपकी इज्जत खराब करेंगे, लोगों के सामने आपको जो है ना वो रुसवा कर देंगे, तब जाकर उनको जो ना थोड़ा सा सुकून मिलेगा. लेकिन ये बात कई मर्तबा लोग भूल जाते हैं, अगर आप किसी के एक आंसू का भी रीजन बनते हैं, सबब बनते हैं, तो आपको उसकी कितनी लंबी चौड़ी जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी. अगर इसके बारे में अंदाजा हो जाए तो लोग इतना बचकर चले ना इस जमाने में, इस दुनिया में, कि भाई ये सोच रहे हमारे. लेकिन लोगों को भाई ये होता है कि भाई आज अच्छा लग रहा है, चस आ रही है, अगले इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हैं. लेकिन जब इस चीज का उन्हें एहसास होता है, जब रियलाइज होती है ये तमाम चीजें, तब वक्त भी काफी आगे निकल चुका होता है, चीजें भी हाथ से बहुत ज्यादा गायब हो चुकी होती हैं. और जब एहसास होता है इंसान को, तब बहुत देर हो चुकी होती है. तो कोशिश किया करिए, अगर आप इन चीजों में, इन ऐसे कामों में हैं जो कि आपको रियलाइज नहीं होता, अभी आप गुनाह कर रहे होते हैं लेकिन आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो अभी भी वक्त है जनाब. क्योंकि जब आप उस टाइम में आ जाते हैं जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास ये होता है कि भाई पछता रहे हैं लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप अभी से जो है वो चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लें और लोगों का ख्याल रखें और हर किसी की इज्जत का ऐसे एहतराम करें जैसे मानो वो आपकी अपनी इज्जत हो. और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि सारे अली बग्गा की आवाज में होने वाला है, और इनके साथ एक खातून है, उनका नाम पता नहीं क्या है, तो हम ये प्यारा सा गाना इंजॉय करेंगे. और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल ही ज्वाइन कीजिए 888-1 पर. और फेसबुक पर जितने लोग मौजूद हैं, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, पता चले आप हमारे साथ हैं.

ओके जी, क्या बात है. यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब हमारे सामने आ जाती हैं, जब देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि भाई जान, लोग ऐसा भी सोच सकते हैं. बिल्कुल जी, लोगों की सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना. तो अच्छी बातें, जो जैसा होता है वो अगले इंसान के लिए भी बिल्कुल वैसा ही गुमान और सोच रखता है. तो इस बारे में जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब कम सोचा करें, अच्छी बात होती है. जितना कम सोचेंगे उतना पुरसकून रहेंगे. और यहाँ पर ये प्यारा गाना एंजॉय कीजिए. गाने के फौरन बाद हम जरा जाने वाले हैं न्यूज ब्रेक की जानिब. उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं. वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे. वापस आकर आपके पसंद के गाने सुनते हैं, या आप क्या कह रहे हैं वो देखते हैं. तो कहीं नहीं जाइएगा, यही मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. जल्दी का नाम मस्ती, सुनते रहिए और साथ दीजिए.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अवाम के मजबूत करणो पवंदो।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान रवाना। वजीर आजम छिंगाई सहकार कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदो। खिते जे सूरत हाल ते आगाह करण सां गड अमन ऐं इस्तेहकाम वारनि कोशिशुनि ते ज़ोर भरींदो। वज़ीर आज़म बेशिकक में किर्गिस्तान क़यादत सां बि मुलाक़ात कंदो।
1: पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबोल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़, फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर इस्तंबोल पहुतल। इजलास में सऊदी अरब ऐं तुर्किया जा परॾेही ऐं दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक थींदा। फील्ड मार्शल ऐं तुर्किया जे सरकारी दौरे दौरान अहम मुलाक़ातूं बि कंदो।
2: कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमेरिका जो ईरानी बेट लार्क ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। आबनै उर्म्स में अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनै उर्म्स में बारूदी सिंगू विछाइण वारनि कोशिशुनि रोकण लाइ ईरानी लार्क बेट ते हमिलो कयो। पासदारनि इनकलाब अमरीकी हमलनि जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमरीकी हमलनि में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं UAE मौजूदु अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो। आबनै उर्म्स मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे।
1: ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त खिते में बदमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। तेहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मुंह टोड़ जवाब ॾिनो वेंदो।
2: ईरान जंग अमरीका खे थकाए विधो। अमरीकी फ़ौजी क़यादत ट्रम्प इंतिज़ामिया खे ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट पंहिंजी रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई खे डिघी ॾिनी वई आहे। अमरीकी फ़ौज जी मजमूई जंगी सलाहियत मुतासिर थी सघे थी। अमरीकी फ़ौजी क़यादत मूजिबि ईरान सां 6 महीननि खां जारी जंग फ़ौजी वसीलनि ते वॾो बार बणिजी चुकी आहे। हिक ई तकरार में फोर्सिस खे मसरूफ़ रहण सां अमरीकी अस्करी सलाहियत खे ख़तरा थी सघनि था।
1: सिंध हुकूमत मलीर जे एजुकेशन सिटी में ॾेही ऐं परॾेही कंपनियुनि लाइ ICT क़ाइम करण जी रिथाबंदी करे छॾी। 1070 एकड़ खां वधीक ज़मीन ते ITI कंपनियुनि लाइ सनतूं ऐं आबादियूं क़ाइम थींदियूं। ॾेही तोणे परॾेही कंपनियुनि 700 खां 800 मिलियन डॉलर जी सीड़पकारी करण जो वाइदो करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन में डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइम कया विया। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ऐं ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल सनतनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल आहिनि। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो आहे। ITI सिटी लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारे अमल बि जारी आहे। मनसूबनि जे बाज़ाबता इफ़्तिताह जे तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो इम्कान।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: मालवन भारन लाइ खुशख़बरी। 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जी जान डोर चारो मसालो जानवरनि में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बणाए। हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि वटि दस्तियाब आहे।
5: खुश खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होल

0: बालानी रोड मैरापुर असावड़ जगह जो जा रही हूँ जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बैरल लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ओगी जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती के नाम मस्ती। तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। यहाँ पर हमने जरा कदम रख लिया है, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है, उन लोगों को बता दें जिन्होंने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया होगा। तो भाईजान आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती है या फिर नहीं बनेगी, ऐसा कह ले। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में चाहिए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1। ऐसे के साथ साथ जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मालूम हो कि हमारे साथ फेसबुक पर इतने प्यारे प्यारे लोग भी मौजूद हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं ना तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। बाकी तो आप लोगों के मैसेजेस हैं तो क्या कहते हो, कुछ मैसेजेस पढ़े जाए क्योंकि काफी सारे जमा हो चुके हैं। उसके बाद जो है ना आप लोगों की तरफ जो है ना आपकी पसंद के गाने भी फेंकूंगी तो पहले कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं।

Ay, Lee, ADSE kar lagi. Main log aane wale. Aaj kal hi gaano mukhe bane to. Okay, so gaano enjoy kar yun pyar ka ilawa hamare sath Iram kehti hain, meri dilbar dost, main toxic nahi hu, na hi main toxic banungi kabhi, aur mujhe toxic logon se itni bezari hoti hai ki bas kya bataun tumhe. वैसे टॉक्सिक आप क्यों बनेंगे, नहीं बनना चाहिए. टॉक्सिक लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तो बस आप अच्छी इंसान बने ये बहुत जरूरी होगा. और उसके अलावा टॉक्सिक लोग किसी को भी पसंद नहीं आते. और गोट हाची गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए कहते अमां जो आवाज मिठो आए. गानो लिखो है शायद तव्हां, सो मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलायूं था. और ये मौजूदी वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद फहीम शेख अदा छा हला सफा चा का हाँ सफा चाक कलम सब कुछ आया तव्हां ॿुधायो की गानो ॿुधायो. गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायूं था, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया. और कहते हैं दादा नींद आ गई आज इसलिए लेट हो गया, और कल आपने कैसे मना लिया कि मैं शो सुने और SMS ना करूं. हाँ वही मैं सोच रही थी, आज आपने थोड़ी लेट करी तो मुझे लगा कि भाई वो आपने बाजरा सीरियसली ले ली. चले यहाँ की मोहब्बतें होती है कि आप नाराज नहीं होते. वैसे भाई बहनों से नाराज ना ही हो तो बेहतर होता है. भाईरा जी कहते ना भेनर की प्यारा हूं नायन, आई मुखे लगा ना भेनर भी थोड़ी थोड़ी भावन की प्यारी हूं. ज्यादा भाईरा भेनर के प्यारा हूं. सो ख्याल कंदा कयो था.

अच्छा कोई और होता तो वो कहता गाला है मोसा कॉल ते पर ये फायजा आली आई टेक्नोलॉजी थी होया था हाने वीडियो कॉल गाला ने जी गाल हली रही है सो बिल्कुल ये गाल

ओके जी ओके सुठी ॻाल्हि आहे. इन खां अलावा हीउ वारो ट्रेक आहे जेको असांजी लिस्ट में आहे, ॾिसूं त कहिड़ो गानो आहे. ओके जी, शमन मिराली जी आवाज़ में ॾाढो वीआईपी गानो, हिन गाने खे बि इंजॉय कंदासीं. उन्हनि भाउनि खे डेडिकेट जिन शमन जे गाने जी फरमाइश कई हुई. और ये हमारे साथ ही मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, वालेकुम असलाम बाजी, शो आपका बड़ा जबरदस्त जा रहा है और टॉपिक आंसर आपने दिया है बिल्कुल दुरुस्त. क्या बात है, बहुत बढ़िया. और आशिक अली मल्हा हमारे साथ है फ्रॉम बकर अबड़ो. सलाम जी, वालेकुम असलाम, डेडिकेट नज़ाकत अली अबड़ो, तारिक अली अबड़ो, गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो जी नाले. ओके, तव्हांखे चवंदा भली करे आया, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया.

ओके जी, ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां एंजॉय कंदा. गानो ॿुधो न, गाने खां बाद में शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि, जल्दी वापसी तव्हां मोटींदासीं. तव्हां कॾहिं वञो, हिते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटंदमि. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जीएफएम 88 नेटवर्क. आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक.

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा
6: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेहरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती। आपकी सिद्रा यहाँ पर आपके साथ मौजूद है, और जी मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, और आप लोगों को वेलकम कहा जाता है क्योंकि हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। ओके जी, तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया होगा, उनका भी वेलकम। बाकी जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम तो लोगों को भी वेलकम कहा जाता है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, तो सवाल ये था कि आप मुझे बता रहे थे वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से हम दही नहीं बना सकते। ओके जी, गाना एंजॉय करें, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना आप लोगों के मैसेजेस की जाने पाया जाएगा। बिल्कुल जी,

ओके जी बिल्कुल बिल्कुल वक्त सां सब चीज़ूं चेंज थी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्त सां इंसान बि चेंज थी वेंदो आहे इहा सही ॻाल्हि आहे ऐं हीउ वारो ट्रैक असांजी लिस्ट में आहे जेके ट्रैक मतिलबु पेंडिंग हुया उन्हनि खे बि असां हलाईंदा वेंदासीं गॾो गॾु तव्हां इंजॉय कंदा हीउ मुमताज मलई जी आवाज़ में गानो आहे जंहिंजी फरमाइश असांखे असांजी भाभी करे छॾी हुई भाभी त मूंखां विसरी वञे पई सो भाभी गानो इंजॉय कजो ऐं प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो बिल्कुल जी मैसेज तरफ़ अचां थी पर थोरो गानो ॿुधी वठो वरी न त चवंदा आहियो सदरा तूं त गानो ॿुधण ई ॾींहुं नथी

अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, हमें तो पता नहीं था। चलिए, कितनी अच्छी बात है जो कि हमें अभी मालूम पड़ गई। उसके अलावा यहाँ पर भाई आके कुछ मैसेजेस हैं तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। और ये चाचा खालिद कहते हैं, बेटा सिडो लास्ट सेडी लिंक, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, खैर से जी जी इंशाल्लाह कहते हैं। बेटा सॉन्ग की रिक्वेस्ट मेरी भी पेंडिंग है अभी तक। हाँ हाँ बिल्कुल, चलाएंगे आपकी पसंद का गाना भी, थोड़ा सब्र कीजिए जरा। और ये मौजूद है हमारे साथ, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, अल्ताफ अली गादी बलोच आपको वेलकम कहा जाता है। आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है जो कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आशिक अली मल्हा हमारे साथ है फ्रॉम बकड़ अब्रो से, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, डेडिकेट नाजिक अली अब्रो और तारिक अली अब्रो, गुलाम मुस्तफा अब्रो जी नाले। ओके ओके, दवा के चौथा भली करी आया। और ये हमारे साथ हैं जी

ओके जी, क्या बात है। और एक और गाना हमारे पास है जी, ये OST है और OST की फरमाइश हमें पता नहीं किसने कर दी थी, तो ये वाला गाना भी हम साथ साथ एंजॉय करने वाले हैं। और ये हमारे साथ हैं जी मकसूद मदा। लगते हैं कि घर वाले कहते हैं तुम गिंदू बदर चले जाओ, मैं क्यों वहां जाऊं, क्या होता है वहां पर, आप उन्हीं से पूछ लेंगे वो आपको क्यों कहते हैं ऐसा। इतना बेजार किया है आपने घर वालों को, आए हाय मत करें भाई।

वजह से आज आप देर से आए हैं ना प्रोग्राम में, तभी आपको नहीं सुनने को मिला. बाकी बहुत शुक्रिया. वैसे इजाजत लें आप लोगों से, क्योंकि ये गाना ऐसा है कि इस गाने को बस सुना जाए. तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से. वरी इंशाल्लाह तां सांजे का मुझी मुलाकात थी पई ओहा पंज पजे वारे प्रोग्राम में थींदी. सो जॉइन कंदा आई पांजो ओ हेडो सारो ख्याल रखंदा. किथे का गलती थी हुजे त माजरत कयूं था. जिनो फीडबैक रहिजी वियो आहे, जिना गाना रहिजी विया, सभिनी का माजरत कयूं था. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत. अलाह हाफिज़. बाय बाय. लव यू ऑल. एंड

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: थाई वायदे बाबत पहिरियों इजलास अॼु इस्तांबुल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्तांबुल पहुतल। इजलास में शिरकत लाइ सऊदी दिफ़ा वारो वज़ीर बि पहुची वियो। टि मुल्की इजलास में मका दिफ़ाई मुआदे ते अॻुभराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। मका दिफ़ाई मुआदे ते इजलास खां पहिरियों पाकिस्तानी वफ़द जूं तुर्किया जी क़यादत सां मुलाक़ातूं। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया जे दिफ़ा वारे वज़ीर सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं। ॿितरफ़न लाॻापन समेत दिफ़ाई सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही मुल्कनि जी क़यादत जो दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बैदि अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमरीका जो ईरानी बेट लारक ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। आबनाए उर्स में अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाए उर्स में बारूदी सिंगूं विछाइण वारी कोशिश रोकण लाइ ईरानी लारक बेट ते हमिलो कयो। पासदारनि

जे जवाब में उर्दू ऐं यूएई में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए उर्म्स मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे। ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त खिते में बदअमनी अदम इस्तेहकाम कंहिंजे मफ़ाद में न आहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटो जवाब ॾिनो वेंदो। ईरान जंग अमरीका खे थकाए विधो। अमरीकी फौजी क्यादत ट्रंप इंतिज़ामिया खे ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ज़रिए रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फौजी कार्रवाई खे ब्रेक ॾिनी वई आहे। अमरीकी फौज जी मजमूई जंग सलाहियत मुतासिर थी आहे। अमरीकी फौजी क्यादत मूजिब ईरान सां 6 महीननि खां जारी जंग फौजी वसीलनि ते वॾो बार बणजी चुकी आहे। हिकु ई तकरार में फोर्सिस खे मसरूफ़ रहण सां अमरीकी अस्करी सलाहियत खे ख़तरा थी सघनि था। सिंध हुकूमत मलीर जे

0: थोड़ी पर ॾेई कंपनी लाइ 700 खां 800 मिलियन डॉलरनि जी सीड़पकारी करण जो बि वाइदो करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन में डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइसिस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइमु कया वेंदा। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ऐं ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल सनअतुनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो आहे। IT सिटीअ लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारो अमल बि जारी। मनसूबे जी बाज़ाबता इफ़्ताह जी तक़रीब जल्द मुनक़द थियण जो इम्कान। सिंध काबीना मलीर ज़िले में एजुकेशन सिटीअ खे वधीक 5,987 एकड़ सरकारी ज़मीन ॾियण जी गुजगुअ में मंज़ूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर आसिम हुसैन जी दरख़्वास्त ते मलीर ज़िले जे देह कोठड़ में 4,000 एकड़ ज़मीन ॾिनी वई। देह वांडो में 925 एकड़, देह जोड़जो में 5,000 एकड़, जॾहिं त देह आबदार में 562 एकड़ सरकारी ज़मीन एजुकेशन सिटी लाइ ॾिनी वई। 5,987 एकड़ ज़मीन जी मालियत 150 अरब 43 करोड़ रुपया आहे, जेको फ़िलहाल सिंध हुकूमत जो नाणो खातो भरींदो। सेनेट कमेटीअ जो पिम्स इस्पताल में ख़ुसूसी इजलास। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि जी साने बाबति ब्रीफिंग। कमेटी मेंबर साने जी CCTV फुटेज ते खदशा ज़ाहिर करे छॾिया। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त मेंबर CCTV फुटेज ते शक ज़ाहिर कयो आहे। कमेटी कंहिं नतीजे ते नाहे पहुती। सभिनी खे तस्लीम करणो पवंदो त निज़ाम तबाह थी चुको आहे, सुधारण लाइ तेज़ीअ सां कमु करणो पवंदो। बलोचिस्तान में भारतीय फितने ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन, ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान जे इलाइक़े वाक़ में दहशतगर्दनि जी मौजूदगीअ वारे इतलाह ते फोर्सिस ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां स्टेशन ऐं कस्टम हाउस ते हमले मुलविस हुया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज़ ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बहितरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज़ ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज़, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: सोनी, अज तो दाढ़ी खुश थी लगे।
2: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
1: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
2: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
1: छा छा?
2: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हिय चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन ता, गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
1: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
2: साईं, रेडीए थे ता बुधाइन, बुध अजी वठी अच।
1: मां हाणे ही तो वणा त जी असी भी खीर वधायूं ए नोट कमायूं।
2: हाँ साईं हाँ।
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर से सुबह डे का शाम पंजे वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर ए आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर ता वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधन उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 03011 96 851।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटी
1: सिंध संभलिय जो आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो। नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स ते बस लाइ पीपी सिंध जे सदर निसार खोड़ो पारां पेश कयल रिथ ते बस कयो वेंदो। पुलिस संभलिय ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रोड बंदि करे छॾिया। सूबन बाबति सिंध संभलिय में पेश कयल रिथ ते अवाम जे सख़्त रद अमल बाद वॾे वज़ीर वटि आम इजलास। पीपल्स पार्टी सिंध जे पार्लियामेंट पार्टी इजलास 1.5 कलाक खां जारी। ज़रियनि मूजिब पीपल्स पार्टी पारां ऐवान ऐं पेश कयल रिथ खे करारदाद में तब्दील करण ते गौर। नवनि सूबनि बाबति रिथ सिंध असेंबलीअ में पेश करण ते एम के एम पीपल्स पार्टीअ जी थोराइती। पीपल्स पार्टी जे रिथ खे आइन मूजिब करार ॾेई छॾियो। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदीअ चयो आहे त आम माण्हूअ जा मसला हल न थी रहिया आहिनि, सभु इख़्तियार हिकु फर्द वटि आहिनि। मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। एम के एम जे डिप्टी पार्लियामेंटी लीडर ता अहमद चयो आहे त नवनि सूबनि ऐं इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति बहस खे एम के एम पंहिंजी सियासी कामयाबी सम्झे थी। अॼु पीपल्स पार्टी पाण नवनि सूबनि ते बहस कराए रही आहे। एम के एम जे ॻाल्हियुनि खे संजीदा न वरितो वञे। सूबनि बाबति रिथ आणण जो मक़सदु अवाम खे सूबनि जे हामियुनि जा चेहरा ॾेखारणु आहे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त असेंबलीअ जे फ्लोर ते पहिरें बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहियूं आहिनि। सिंध असेंबलीअ जे स्पीकर चयो आहे त सिंध जे अवाम जे हक़ में जेको हूंदो उहो ई फ़ैसिलो थींदो। सूबाई वज़ीर सरदार शाह चयो जेको स्पीकर चयो आहे जेको बहितर हूंदो उहो ई थींदो। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति इस्तंबुल में पहिरियों इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर, सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई वारो वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक मका दिफ़ाई मुआदनि ते अॻुभराईअ जो जाइज़ो वरितो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुची वियो। वज़ीर आज़म जो किर्गिस्तान अख़्तियारनि आदर भाव कयो। शहबाज शरीफ किर्गिस्तान में सरकारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदो। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान क़यादत ऐं ॿियनि मुल्कनि जे वफ़दनि सां बि मुलाक़ात कंदो। कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमरीका ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमरीका जो ईरानी बेट लारक ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं यूएई में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। आबनाए उर्स ऐं अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाए उर्स में बारूदी सिंगूं विछाइण वारी कोशिशूं रोकण लाइ ईरानी लारक बेट ते हमिलो कयो। पासदारनि इनकलाब अमरीकी हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमरीकी हमले में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं यूएई में मौजूदु अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए उर्स मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे। ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पिज़िकशान चयो आहे त खिते में बदअमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिं बि मफ़ाद में न आहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटरोल जवाब ॾिनो वेंदो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी غذائی اجزاء मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटरी कबीर रोड, मेरापुर, कराची, इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुम्मे, छंछर, आचर एंड सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन। हर जुम्मे, छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: मिनिस्टरों का फौजे जफर मौज आप बनाएंगे, आप कान से पकड़ के एक को उतारेंगे, एक को लगाएंगे, एक को बिठाएंगे। आपको पता है, आपको मालूम है कि आज बुरादरी शाह ताकतवर है, उसको ना कोई उठा सकता है, ना उसको कोई अपनी जुबान बुलवा सकता है। वो अपने सिंध के लिए, सिंध धरती के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है। जनाब ये चंद गुजारिश थे। देखो हम कभी नफरत की बात न सियासत में करते, हम यहां एक मुत्तहद सिंध की बात करते हैं, जिसमें तमाम इकाइयां, तमाम लोग, तमाम जबान बोलने वाले, तमाम मजहब के लोग प्यार से, मोहब्बत से, अमन से इस धरती को तरक्की दें। क्योंकि सिंध सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिंध के अपने एहसासात हैं, सिंध के अपने जज्बा, हर सिंधी के अपने जज्बात है। आज देखो आप, चलो जरा करके दिखाओ तमाशा, फिर क्या होगा। और लोग बात करते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आईन में लिखा था। आईन एक मुस्तनद दस्तावेज है जिसको हमेशा के लिए बनाया गया। उसमें हां एक बात रखी गई कि अगर कभी किसी वजह से, ऐसा नहीं कि बिला वजह कोई अपना शौक पूरा करने के लिए करे, किसी वजह से सूबों के उसको सरहदों को अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके लिए आईन में मौजूद, आईन में क्या मौजूद।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्के मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल, 3000027224। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 3001065।
4: टेनर पट्टी लोई सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 3000032043072 आई 0242460100।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी असां वटि हवा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूदु आहिनि। फौजी भाइरनि

0: हट ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। हॉटसाइड टेकर निगरानी हालानी रोड आए 03201800003।
1: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 खोलियो तो पब्लिसिटी पर एड़ो कामयाब जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी।
1: हरी इश्तियाद मजलिस।

छाखे वञो छो बेली थिए बीन जंजक कर अग जो वाली जो सोखो हुंदो सो कल हासी सोरंदड़ तमाम मौजिज बुधंदड़न के लाखेणे लतीफ मेहराली ए लोली जेहड़ा सोहना सलाम आई जीए एफएम 88 रेड वर्क जे सजी टी

शाल अवां डुखियो नी न डिसो जुग जुग जियो लन जी टीए लाड़कणो जीएफएम मोरो जीएफएम महराब जीएफएम मातली शो जी हा नए अंदाज नए जोश नए जज्बे सान अवां सान खोड़ सारियूं गालियूं खणी नऊं शो अवां जे लाइ पेश कजे थो सिंधड़ीअ जी शाम। जी जनाब अवां जो मेज़बान अवां जो पंहिंजो जी हा को ॿियो आऊं अकारी

जी जनाब वेलकम भलीकी बतन भरियो सलाम यूनिस। जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ए भाइरो जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम स्टूडियोज मां अवां साण सिक गाए पजो ए विख पीक सते में नूर रहे ऐसी कोशिश कंदासी तेने में ताजा मैसेजेस शामिल कयूं आई जेको सेकंड आवर हुंदो उनमें ताजो

कॉल्स बि शामिल कंदासीं। त मैसेज करण जो तरीक़ेकार इहो आहे त अॼु जेकर तव्हां मैसेज हाणे ॿुधो पिया मूंखे, तव्हां सखर में आहियो या तव्हां मीरपुर ख़ास में, लाड़काणे में आहियो या मातली में, तव्हां सकरंड में, मटियारी में, पुर में या मोरे में, जिते जिते भुजो हुजो हशाश ऐं ख़ुश ऐं बाश, शाला वारी मुर्क मेरी न थिए। ऐं हा, मैसेज मोकिलणु चाहियो था त टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾियो ऐं उन खां पोइ पंहिंजो नालो लिखो, पंहिंजे ॻोठ, पंहिंजे शहर जो नालो लिखो। सेंड कयो मैसेज हाणे ई सेंड करियो। 88 जो नंबर आहे, पर शुरूआती जेको कोड हूंदो आहे, जॾहिं तव्हां पेड मैसेज ते वेंदव, मैसेज लिखण टाइप शुरू कंदव, त उते तव्हांखे MTI मातली जो शॉर्ट अखर हूंदो, MTI उहो लिखंदव, त पोइ असांजे सॼे नेटवर्क तां तमामु जेके मैसेजिस आहिनि उहे असां वटि स्क्रीन ते शो कंदा ऐं असीं अव्हां जा मैसेज कंदासीं शाम। 88 सां वारी ख़बर। आगस्ट जो ऐं सेप्टेंबर ॾांहुं वधंदड़ लम्हा बल ॻाल्हियूं बि कंदासीं, शामिल कंदासीं ऐं आवाज़ साथ में, तॾहिं मज़ो ईंदो जॾहिं अवाम थी वेंदव बिल्कुलु शामिल। त पोइ बसि तव्हां बिना देर जे मैसेज ॻाल्हियूं थियनि ज़बरदस्त ऐं तव्हां सां थियनि दिलि जूं ॻाल्हियूं ऐं ॻाल्हियुनि में हूंदियूं उहे ॻाल्हियूं बि शामिल जेके तव्हां लिखी। ट्रैक शामिल कंदासीं, केरु ईंदो केरु ईंदो उहो अव्हां ते था छॾियूं। अव्हां खे वरी तरी आई पंहिंजे ॻोठ लिखजो, हाणे ई मोकिले छॾियो, बदीन खां बखर सखर सॼी GFM 88।

जी जना वेलकम भलीकार खुश आमदीद अवां शो बुधो पिया सिंधड़ी जी शाम ऐं सिंधड़ी जी इन शाम में जिते जिते बि अवां असांखे ज्वाइन कयो आहे तव्हां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे जी एफ एम प्यार शामिल थियण चाहियो करे सघो था टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 881 यानी 8881 ते मैसेज मोकिले सघो था सो जनाब 8881 सौ नंबर आहे उन ते मोकिलियो मैसेज ऐं उन खां पोइ ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु शामिल थींदो त पोइ दोस्तो महिरबानी क़दरदानो असीं मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोली इन करे कयूं पिया त जीअं असां कोशिश कयूं तव्हांजा कुझु मैसेज अची अवां वटि मौसम कीअं आहे अवां वटि हींअर कहिड़े किस्म जुड़ियल आहे इहो बि तव्हां खणंदासीं पर पुछंदासीं थोरी देर खां पोइ यानी 6 वॻे खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में तव्हांजो कॉल मैसेज शामिल करणु चाहियूं था केरु महिरबानी MTI स्पेस रही पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो थो लिखे ऐं 881 ते मैसेज ॾियारे थो मोकिले फ़िलहाल वठूं था हिकिड़ो ब्रेक एंड ट्रैक

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाबा है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120

ओढ़ाजी हुजूर बख्श रेल ज्वाइन कर चुका है। दादी खान रिंद साहब दीन मोहम्मद रिंद लखत हो रहा अयाज रिंद नंढड़ो थैंक यू भले खिलो पे अवां सके मैसेज मोकलियो ई बिल्कुल मौजूद सामाइन तहां बस अंग लिखी सकदा MTI स्पेस रियो पेंजे गोठे शहर पेंजो नालो लिखो 881 नडो ब्रेक वरी शाम जे पहर आए करा तां माहौल उन माहौल असा बरकत अली जेले पेश पे जी बुदऊं शाम जे ही पहर के

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फेट

इन्हें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

लेखक सीनियर ब्रॉडकास्टर मीर मुर्क वाडो साहब असा सण गड असा उन्हन के वेलकम चंदासी भलीकार सोवज समीन प्यारे पंजाबी रंगन ते जडे गीत हुंदा इन त अदल सुमरे साहब के न खूब फरमायो जेंब राह मथा तंजा पेर पवन जेंब राह मथा तंजा पेर पवन मुजा गीत हुजन विखरियल उनन वाटन ते अवनी वाटन ते एकडो खूबसूरत गीत विछाइंदासी बुधंदासी इन जबरदस्त ट्रैक के एंजॉय कजो बाकी गालियो ब्रेक खंपाई

सिधी आहे जी एफ एम एट रेडियो नेटवर्क ऐं अवां ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम ऐं सिंधड़ी जी शाम में यकीन अॼु असां वसण वखातिब आहियूं तव्हांजो आर जे वञे पंहिंजो यूनुस बकारी अवां साण वखातिब आहियूं जिते बि हुजे ख़ुशि जो आबाद हुजो अवां जा कुझु मैसेजिस वधीक अची चुका आहिनि शामिल कयूं ॻोठ हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली खां असांखे झंडो मरी खां ज्वाइन कयो आहे कुर्बान अली ख़ासकेली मिठा माण्हू तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजो अवां असांखे यादि कयो मैसेज कयो महिरबानी कुर्बान ख़ासकेली वेलकम ऐं भलीकार जीवन सामेन जीअं त तव्हांखे चयो त पहिरीं कलाक जे ब्रेक खां पोइ असां ॿिए कलाक में जॾहिं वेंदासीं त तव्हां ॻाल्हियूं कबियूं फिल वक़्तु छाकाणि घटि टाइम आहे ऐं न्यूज़ ब्रेक जेकॾहिं असां वटि हूंदो त न्यूज़ ब्रेक वठंदासीं छाकाणि इहो न्यूज़ ब्रेक लाज़मी हूंदो आहे पर कॾहिं केॾी महिल असांजी काफ़ी लिस्ट न्यूज़ ब्रेक जो इशू हूंदो आहे नेटवर्किंग जो इशू थी सघे थो पर न्यूज़ जो को बि इशू न हूंदो इनशाला न्यूज़ हूंदी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं गॾो गॾु असां वांखे वठी हलंदासीं साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में जितां हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक तव्हांजे लाइ कॉल करे वठंदव त पोइ गॾिजी ॿुधी था वठूं मिठड़ो आवाज़ ऐं शमन मीराली जो

0: सिंध जे गैरतमंद औलाद सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि कई आहे ऐं इहो बार ऐलान कयो आहे त सिंध जो विरांगो सिंध जे हिन अवाम खे कॾहिं बि क़बूल न आहे। जेसि ताईं असांजे सिसिनि में साह आहे, रत जो आख़िरी फुड़ो आहे, असां सिंध जे हक़नि जी हदुनि जी हिफ़ाज़त कंदा रहंदासीं। पर हिकिड़ी तारीख़ आहे, सिंध जॾहिं अंग्रेज सरकार जे दौर में जॾहिं बंबई था।
1: अब आप सुनेंगे KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601100।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: कॉल ॾिसंदासीं। पहिरीं कॉल कंहिंजी आहे? हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बाजा हलनि पुटु?
0: अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ आहे। केरु साहब ऐं किथां खां? छा हाल साईं? चङा भला, मतारा जोड़।
1: अलहमदुल्ला, तूं ख़ुशि आहीं पुटु? ठीकु अलहमदुल्ला।

0: महिरबानी लख थोरा अव असा के पहिरीं कॉल कई अव के दिल जे गहराइन सां भलीकार चऊं था खुश आमदीद चऊं था इएं ई मोहब्बतुन में असा के याद कंदा रहजो जीओ साईं महिरबानी लखण याद कई ॾिसंदासीं त जेका ॿी ॻाल्हि आहे उहा कंहिंजी हूंदी ऐं असां सां शामिल था काल जी तरफ़ हलो अस्सलाम वालेकुम चंगणा साहब ख़ुशि आयो ठीकु आयो चङा भला मतारा जोड़ लॻी पई
1: मौसम थियो
0: हा हा हा काफ़ी ॾींहं ऐं थोरो गुसाईंदड़ शागिर्द ऐं स्कूंदा आहिनि पोइ इन हिसाब सां गुसाया अच्छा अच्छा अगरि केरु पियो ॿुधे जी जी साईं भाग भलाइन तव्हां जहिड़नि मिठनि माण्हुनि असांखे यादि कयो आहे
1: यार

0: पे मुझे
1: जी सर आवाज अच्छे तो हमारे बिल्कुल
0: जी केर साहब इनके था गा
1: भाऊ मां सैयद इमदाद अली शाह गले दो जिले सखर मां
0: छा हाल है साईं इमदाद शाह खुश आयो ठीक आयो
1: दादा खुश आयो तो ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह सखर जा वाला हियर मौसम के पेरी मौसम बुधायो पो वरी वात में पानी अचन जेडी गाल पुछनी है तांगा
1: हाँ साईं बिल्कुल पुछो असल त सखर जी मौसम माशाल्लाह बेहतरीन छुट्टी हले पई अज माशाल्लाह दखन जवाब माशाल्लाह मौसम ग्रेट थी वियो
0: अच्छा बूंदा बूंदा
1: बूंदाबारी ना बाकी रात जो थद पे थी रात के टाइम में हवा रहे थी हवा माशाल्लाह प्यारी प्यारी हवा है
0: कुर्ब साईं अच्छा भला सखर में मशहूर है जो पा लोक गीतन में इन गाल में सखर जा हलेला बुधा वे सखर जा हलेला जे केन वे उन थोड़ो बुधाईंदा वो छा हुंदा केड़ा हुंदा
1: सर या पहिरां तो बता जे असा जबानी बुधी है बाकी असा के इन जे बारे में वधिक का इन्फॉर्मेशन काने
0: का डंग डंग डंग जे डंग खजी जे डंग खाए बैन खैरपुर सखर दा मशहूर है खजी जे डंग जे के उई छैन
1: सै वो खारका में मतलब तो सिजे ते मना वो मतलब देखो आ नरम थी वेंदा
0: अच्छा जो अध हिस्सो नरम अध थोड़ो सख्त हुंदो आहे उनके चवंदा आहियूं डंग
1: जी जी हां अध नरम थींदो आहे पर वो जो हेठां पासो हुंदो आहे वो नरम थींदो
0: आहे अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच हियर डंगन जी मौसम आहे तव्हां डंग एंजॉय कजो खाइजो खजूं खाइजो असांखे पंहिंजी दुआउनि ऐं मोहबतन में यादि कजो अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
1: मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे हिन वक़्तु नज़ीर अहमद महिरो साहिबु
0: जी जी
1: ऐं उन खां अलावा तमार मोहम्मद बचल शरवाणी साहब ऐं ॿी सिंध में जेसी ताईं तव्हां आवाज़ वञे त पूरे नेटवर्क जो जेके ॿुधनि था ॿाहिरि भेनर सभिनी खे सलाम इमदाद अली शाह तरफ़ां
0: वालेकुम असलाम महिरबानी मिठा माण्हू लख थोरा तव्हां जा जनाब ट्रैक आहे जी थोरो ॿुधंदासीं इन दौरान कॉल बि अटेंड कंदासीं थोरो आवाज़ कंदा

0: आवाज अच्छे पे हो जी जनाब, कॉल ड्रॉप थी चुकी है। दिसन असी त बी कॉल जेसने अच्छे तेसी तई एक दफो बेहर तंग नंबर बुधाई 0334352578 6 दिसन असी त सन गद के रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम साईं, शाह
0: आलम साईं अल्हम्दुलिल्लाह, ता खुश आयो, ठीक आयो
1: जी साईं? रोडी सखर खान पुराणो बुधन नजीर अहमद मंगरे
0: मंगरिया साहब, खुश आयो, ठीक आयो, तबीयत की हैन? ठीक ठाक है, हशाश बशाश
1: तमाम तो बुद्धि है, फोजिया सूमरे जो कलाम याद आयो।

0: आमीन सुम आमीन अवां सके दोस्तन दे नाला खण हो दे
1: ये जमींदार शाह आजम अरमा पुरो साहब
0: सलाम ओके दिसना सी कॉल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम दा
0: जी अदा
2: वाना भी खास के
0: मतारा जोड़
2: अल्हम्दुलिल्लाह दो बारे में ता ये सभी सही है दो खैर
0: अल्हम्दुलिल्लाह ता जी दुआ है ता बुदाए ठीक है
2: बजे शाम विरात में सफर में आज प्रोग्राम बुदो पे आज जमशोर जी ना यवन जड़ो आवाज आवाज मित्र आवाज सफाई कोलो वसलाई
0: माशाल्लाह हां दिस दिस के दन सुठा लफ्ज गलाई तो आने कुर्बान अली होशियार थी वियो आई
2: बिल्कुल बिल्कुल ता मोहब्बती मानू आयो ता के ये गलन पांदो पर ता मोहब्बती मानू आयो ता के न याद करा जो खुश करा दे
0: हां अल्लाह करे खुश हो जो तमा ता कदी भी केर तो बुदे नाला खण दो दोस्तन
2: असाने समीर कंवर जो आवाज है या कबीर सिंह जो आवाज है जो पानी में मतलब सिंजर में पानी पानी में
0: कोशिश कंदासीं कोशिश कंदासीं हाज़िर साईं कोशिश कंदासीं बिल्कुल ॿुधाईंदासीं वालेकुम असलाम तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हांजी थैंक यू मिठा ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हैलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब वे किथां
3: खां
0: तलार खां छा हाल आहे ख़ुशि आहियो शुक्र आहे अलाह पाक जे करम में अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे सभु दोस्त चङो तमामु घणी महिरबानी तव्हांजो शहज़ाद साईं साईं हाज़िर ॿुधाईंदासीं बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं जी साईं ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम सलाम केरु साहब पियो ॻाल्हाए हा मां हिते ई आहियां बसि हिते कुझु ॾींहं वोकल ते हुयसि हाणे अची वियो आहियां ख़ुशि आहियो तव्हां साईं ठीकु आहियो
2: ख़बर पई आहे
0: न न कीअं छॾे वियोसि न न जी एफ एम साण साह लॻल आहे ऐं उनजे एतिरा असांजे जी एफ एम स्टूडियो जेके आहिनि उन चौ तरफ़ वॾा वॾा प्लाट आहिनि असांजे इदारे जा दफ़न बि उते थींदासीं इनशाला दुआ कजा
2: अलाह तोखे वॾी आया
0: इहे तव्हांजी मोहबतूं आहिनि न भला इहे थोरा लाहे कोन सघबा मां थोराए थो तव्हांजो तव्हां सां गॾु कुझु दोस्त आहिनि जेके ॿुधनि था मां ख़ुदि इनशाला हिकिड़ो क्रीम वारो प्रोग्राम कंदुसि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर जल्दी जल्दी असांखे हिकु कमर्शियल कंपनी मिलंदी न जेका उन मूंखे पसंदि कंदी न न ॾिसो ॾिसो ॾिसो अदी सिद्रा ॾाढो सुठो प्रोग्राम कंदी आहे असांजे हिते माना सॼी सिंध में सिद्रा जेतिरो जेतिरा सुठा ट्रेक सुठो प्रोग्राम ॿियो केरु बि कोन्ह करे असांजी भेण ॾाढो सुठो प्रोग्राम करे थी न न मुंहिंजो प्रोग्राम कोन घटियो मां ख़ुदि घोसड़ो आहियां ख़ुदि कोन ईंदो आहियां कॾहिं कॾहिं हिन में कंहिंजो ॾोहो कोन्हे मां ईंदुसि हाणे मुंहिंजा अॼु प्रोग्राम आहे सुभाणे मुंहिंजो हूंदो इनशाला पंज खां सत वॻे ताईं ठीकु आहे रोज़ानो फ़िलहालु न अञा फ़िलहालु आउं नओं आहियां सिखी वठां

0: ठीक है, थैंक यू सर, मेहरबानी हूँ। लख थोरा अल्लाह करे आबाद हो जो। ओके जनाब दस्तासी हाने कॉल ते केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मिठा मानू झिलूरी का खाली क्लासरी गलायो।
0: अच्छा हाल है लाशारी साहब, खुश आयो, ठीक आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बा दुनिया चंद पे नी तवा तबीयत जी खबर जो।
0: तबियत बिल्कुल वीवीआईपी लगी पई है झलूरी का। जगरी खालिक याद कर दो तो पो बाकी भी अच्छा खपे। बस तमा याद कयो हाण त सफा ईद वंगर खुश थी वस।
1: वाह वाह वाह वाह मिठड़ा बा अल्लाह कदो खुश हो आज प्रोग्राम बुधू ता शाम जे खतड़े आवन में।
0: हां त तदी त प्रोग्राम है नालो है सिंधड़ी जी शाम।
1: तमाम सुठो प्रोग्राम आज शो हले दो असा के फोजिया समो जो को भी गानो बुदाइना।
0: हां बस इंजीनियर साहब बुधे पियो मुजी तमा सबनी जी कॉल्स के जे करे किथा फोजिया समो जो गानो खणी दो ताके बिल्कुल बुधराइंदासी।
1: कुछ दोस्त भा बुदनता दोस्त ने खास के लिए अजीज सोलंकी है, अजीज जलवार है, गुलाम रसूल मरी है, जेके संगत प्यारा सब बुदनता तमाम समातन के अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम लख थोरा साईं अवां जे दोस्तन के असां जे बारे में सके भरियो सलाम कुर्ब साईं कुर्ब। जी दोस्तों यही असल जो नंबर है वो एक दफो रिपीट पे करी हूँ। नंबर बिल्कुल सोलो है 0334352578 बुड़ी 3024 5500 786 ते कॉल अचे पी। दिसंदासी त कॉल कंहिंजी आहे ऐं कंदासीं हाल अहिवाल। हलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल कटिजी वई शायदि नेटवर्क जो इशू हूंदो। बहरहाल को मसिलो कोन्हे ऐं तव्हांजो तमामु घणी मुहबतूं आहिनि ऐं अव्हांजो थोराए थो आहियां। तव्हां टाइम कढी असांखे ॿुधो पिया ऐं गॾो गॾु क्यू शीट में ऐं कोशिशि कंदुसि त तव्हांजे लाइ फौजिया जो को ट्रैक रखी वठूं। सो बहरहाल दोस्तो महिरबानी क़दरदानो भेनरो ऐं भाइरो साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में हिकिड़ी कॉल अची चुकी आहे। ॾिसूं था त उहा कॉल कंहिंजी आहे। ओके जनाब हलो अस्सलाम वालेकुम। जी तव्हां रेडियो जो आवाज़ घटि करियो, रेडियो जो आवाज़ घटि कयो, तव्हां वटि इको पियो थिए। वालेकुम अस्सलाम।
2: हलो
0: जी केर साहब, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो। तव्हां रुगो जेको पासे में रेडियो वॼे पियो न, इनखे थोरो परे करे छॾियो। हा वाहिद बख़्श, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला आहियो। हा अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? सभिनी जूं महिरबानी, लख थोरा कुर्ब साईं। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी केर साहब, ऐं किथां खां? आवाज़ चांग साहब तव्हांजो घटि पियो अचे, थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाईंदो? न अञा बि तव्हांजो आवाज़ घटि पियो अचे, अलाए छाजे करे शायदि। हाणे अचे पियो आवाज़?
2: मोबाइल जो नेटवर्क चकर
0: आहे यार। ऐं ख़ैर का ॻाल्हि कोन्हे। अच्छा हाणे वरी नालो ॿुधायो ताकी असांजे सॼे नेटवर्क खे सभिनी स्टेशननि ते तव्हांजो नालो अचे। मंज़ूर अहमद चांग ॿुधायो, ईअं न? अच्छा जी मंज़ूर चांग जी कॉल ई ड्रॉप थी, कावड़ में कॉल ई कटे छॾी भाउ। हाणे ॾिसूं था कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी साईं, नएं दुम्बाले खां ॻाल्हाए पिया, पंहिंजो नालो ॿुधाईंदो? अच्छा अच्छा, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ आहे। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? अकेला वेठा
2: आहियो?
0: पोइ अकेला आहियो त फौजिया जो आवाज़ ॿुधो तव्हांखे कुझु न कुझु महसूसु थींदो। अच्छा ॿुधी वठो।

0: जी रिश्ता से कॉल तो के रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, क्या लावा यूनुस
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो, केर साहब पे गले चंदर चौहान मातली का। अच्छा जी, चंदर चौहान खुश आयो? ठीक आयो,
1: सब खैर अमल लगो पे। तहां बुदायो सर, क्या रहयो?
0: जी जी, शुक्र है, दुआ लगी पई है। आवाज अच्छे पे तहां ताई अच्छा बुधंदा आयो? असा समूरा प्रोग्राम बुधंदा हुंदो ना तहां से जी एफएम जा? लख थोरा याद करण जे लाइ कुर्ब तव्हां जा साईं। थैंक यू लख थोरा। ओके जनाब, 0334352578 6 असांजो नंबर आहे, उन ते तव्हां असांखे मोकिलियो कॉल, ऐं कॉल जेका आहे उहा तव्हां असांखे जल्दी जल्दी कयो ताकी अव्हां जूं ॻाल्हियूं बसि ॿुधी सघूं, ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब, ऐं किथां खां? गुलाम अहमद। तव्हांजी कॉल सां सवेरे अटेंड करे वरिती हुई, इन करे रिपीट कॉल अलाउ कोन हूंदी
1: आहे।
0: हा उहो ठीक आहे, पर असांजी मजबूरी आहे त कॉल फ़क़ति हिकिड़ो दफ़ो हूंदी। माज़िस ख़वातीन हज़रात, शॉर्ट ब्रेक आहे, मूंखे कमर्शियल ब्रेक वठिणो आहे, इजो वापसि थो अचां। ऐं हा, कॉल फ़क़ति हिकिड़ो दफ़ो करियो, सोचे सम्झी करियो, सुठी कॉल करियो, पर ॿ दफ़ा कॉल जेका आहे साॻिए माण्हू जी अटेंड करणु असांखे अलाउ कोन्हे, ऐं न ई कॉल करण वारे खे बि अलाउ कंदासीं, छो त ॿियनि जो हक़ जेको आहे न उहो उन में गज़ब थींदो। त पोइ हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक।
2: लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला, आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: मार जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर
2: वठूं पिया तव्हांजूं तमामु घणी मोहबतूं महिरबानी भलीकार चवंदासीं यूनुस बकारी सां गॾु केरु हूंदो हाणे हाणे त उन जे लाइ तव्हां कॉल करियो 0334-3525-786 ते ॾिसंदासीं हाणे हाणे कंहिं जॉइन कयो हलो अस्सलाम वालेकुम साईं अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे ख़ुशि आहियो साईं ठीकु आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे साईं साईं कहिड़े कुर्ब तव्हांजा तव्हां पहिरियों दफ़ो कॉल कई आहे दिलि जे गहराइनि सां तव्हांखे भलीकार ऐं वेलकम था चऊं अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु के दोस्त ॿुधनि था जी जी जी जी जी जी जी इंशाल्लाह ॿुधाईंदासीं थैंक यू सर तमामु घणी महिरबानी बिल्कुल बिल्कुल ॿुधाईंदासीं बिल्कुल ॿुधाईंदासीं जी जनाब नंबर आहे असांजो 0334-3525-786 ॿुड़ी 3024-3525-786 इन ते करियो कॉल ऐं ॾिसंदासीं त असां सां कॉल ते केरु शामिल थो थिए ऐं हाणे हाणे कॉल अची चुकी आहे ऐं ॾिसूं था कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे लाशारी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अव्हां सां गॾु ॿियो केरु बि ॿुधे साईं जी जी महिरबानी साईं लख थोरा तव्हांजा जी जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
2: जी केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे रुस्तम साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़
3: शुक्र
2: अलाह साईं जा अहसान आहिनि तव्हांजे दुआउनि सां बिल्कुलु ठीकु ठाक ऐं हशाश वशाश आहियूं
3: जी जी असांजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु तव्हांखे ख़ुशि करे
2: जी जी जी महिरबानी अव्हां पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणणु चाहींदो
3: हा दोस्त ॿुधनि पिया लखा ॾिनो जूणे जो मलिक मोहम्मद बलोच दिलीप कुमार मेघवाल ऐं जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम
2: वालेकुम असलाम तमामु घणी महिरबानी लख थोरा साईं

0: जी जनाब, डॉक्टर मोहम्मद कुंभार साहब असें ज्वाइन किया है, डॉक्टर शम्स असें ज्वाइन किया है, दानिश बकारी साहब असें ज्वाइन किया है, आपदा परवीन बुधरायो लख थोरा तहजा बिल्कुल बुधराइंदी छोक बुधराइंदी तवजो मेहरबानी तुम असें बुध पे असि अवजा शुक्रगुजार आयो। कॉल से असा गुड केर हों उन पे अस कॉल वठने की कोशिश क्यों ऊसा कॉल से केर हलो असल वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केर साहब है किथा का?
1: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालका सालेपट का इरफान अली थेगो।
0: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालको सालेपट यानी जिलो सखर है ना?
1: जी हाँ, जिलो सखर।
0: इरफान अली समूह साहब के इरफान अली समूह नालो बुधायो छा बुधायो?
1: जी थेगो,
0: इरफान अली थेबो। अच्छा जी, वेलकम चंदा जी, ताकि काफी जमानो थियो है याद करण का बविया अज याद कयो तमा ताजी मेहरबानी।
1: तव्हां अचो था, ख़बर ई कान थी पए, प्रोग्राम कयो था अलाए कयो ई कोन था, टाइम मटाए छॾियो अथव, असांखे ॿुधायो कोन था।
0: न न न न न, मुंहिंजो प्रोग्राम हाणे न्यू जेको शेड्यूल आहे नई सेम आई जेका अॼु लास्ट डे आहे, सुभाणे खां जेका टिनि महिननि जे लाइ नई सेम आई आहे उन में हाणे अची वियो आहे सूमर ऐं अंगारे जे ॾींहुं शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं। सो इनशाला गॾु हूंदासीं। जी जी जी बिल्कुल, कॾहिं कीअं हूंदो आहे न, ईअं हूंदो आहे त कॾहिं कॾहिं मां ईंदो आहियां, कॾहिं कॾहिं वरी कोन, हिकिड़ा ॿार स्कूल कोन वेंदा आहिनि, स्कूल मां गुस्साईंदा आहिनि, उनखे छा चइबो
1: आहे
0: जेको स्कूल में ॿार न वञे ओचितो भॼी वञे रिसेस में, उनखे छा चवंदा आहिनि? उनखे गोसड़ू शागिर्द चइबो आहे न?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो ये कदे कदे गुस्साए वेंदो आया, वाकई ये तवाजी शिकायत जायज है, हाँ कोशिश कबी तो कौन गुस्साईंदा जी? बस
1: इंशाल्लाह असां भी कोशिश कंदा तां जेको शेड्यूल दिनो आए इन मुताबिक तव्हांखे कॉल कयूं, ऐं मूंखे अॼु बि नज़ीर मंगे कॉल करे ॿुधायो त तव्हांजो प्रोग्राम।
0: नज़ीर साहब जी बिल्कुल कॉल आई हुई, अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे, उन्हनि जा नाला खणण चाहियो था?
1: मां कोशिश कई त तव्हां सां राब्तो करे तव्हां खां पुछां टाइम, पर मां न पुछी सघंदी आहे, मुंहिंजी बि ग़लती आहे, ऐं मां तव्हांखे साॻनि ॾींहंनि ते तलाश कंदो रहियुसि त मूं चयो काश हिन ते हुजे, पर अॼु मूंखे थोरो ॾेनम थो अचे त तव्हां हुन टाइम ते मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजा शेड्यूल कुझु चेंज छा आहिनि।
0: बिल्कुल ईअं, सो बहरहाल इनशाला गॾु हूंदासीं न, असां नेटवर्क जो हिसो आहियूं, नेटवर्क असांजे असांजी हिकिड़ी फैमिली आहे, GFM 88 फैमिली जो हिसो आहियूं, असांखे जंहिंखे जेॾी महिल जिते जिते हिसो पती मिलंदो आहे उहो उते शामिल थींदो, त जेको हाणे मुंहिंजो शेड्यूल आहे नेटवर्क जो इनशाला हर सूमर ऐं अंगारे जे ॾींहुं शाम जो 5 खां 7 वॻे ताईं।
1: बिल्कुल,
0: न न बाबा, GFM सां गॾु ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी बि हिते ई गुज़ारींदासीं, जंहिं रेडियो नेटवर्क सां गॾु हलबो, जंहिं सां रहबो, उन सां निभाइबो, हा इनशाला इनशाला। अच्छा दोस्तनि जा नाला खणण चाहियो था त खणी वठो।
1: बिल्कुल, सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं फौजिया फरज़ाना, हुन खां पोइ राज सुमरो, मंताज सुमरो, हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल, बचल जमानी, नज़ीर मंगरियो, जेके दोस्त ॿुधनि था उन्हनि सभिनी खे इरफान अली थेबो
0: इरफान अली थेबो साहब, महिरबानी, मोहबत, ख़ुशि हुजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु, हलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप थी वई आहे, ईअं थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं, कॉल ड्रॉप थी वेंदी आहे त पोइ ॾुख बि त थींदो, ॾिसूं था हाणे केरु आहे कॉल ते। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाउ, कहिड़ो हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
0: शुक्र आहे। केर साहब ऐं किथां खां?
2: वोट बाबू वेरो थरपारकर खां ॻाल्हाईंदो, दिलीप कुमार मेघवाड़।
0: हा थरपारकर जी, कीअं मौसम भला?
2: मौसम ईअं समय त सीउ लॻे पियो, जहिड़ो करे अहिड़ी थधी हवा लॻे
0: आहे। है वाह वाह। अच्छा भला, जेके बरसातूं थोरणियूं ई पयूं आहिनि, पर कुझु फोटड़ो थियो आहे, सावक थी?
2: न बरसातूं असां वटि त एतिरा जाम जाम बरसातूं पयूं हुयूं, पर मसालो इहे हिन वारे गांव में कोन मज़ो निकी, फसलनि में मज़ो कोन, माल बि ईअं थियो, बुख थी
0: आहे। है अलाह साईं रहम फरमाईंदो, असीं तव्हांजे लाइ दुआगू आहियूं। अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
2: जी रुस्तम अली कंवर, रामचंद कुमार कोलिया, मलक मोहम्मद बलोच, मोहम्मद साले लगारी, ऐं ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम। ऐं मुंहिंजे भाउनि जा नाला वठंदोसीं, नवल राय, दानिश कुमार, सूरज गुल, शंकरलाल मेघवाड़, बाबू ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे
0: महिरबानी महिरबानी। लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु, हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां? ज़िलो नौशहरो फ़िरोज़ कंडियारे खां मेहर अली कलोड़ा साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे भली कार हा बस कुझु ॾींहं मोकल ते हलियो वियोसि हाणे हाज़ुर आहियां बाबा हाणे कोन घुसाईंदसि बाबा कोन थींदो न बसि सोरी बाबा सोरी
1: अच्छा ॿियो ख़ैरु आहे
0: अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे जल्दी जल्दी नाला खणी वठो मूंखे ब्रेक वठिणो आहे
1: जी मुंहिंजो भाउ आहे मां अमीन कलोड़ो निसार कलोड़ो ॿियो जेके बि ॿाहिरि भेनियूं ॿुधंदा सभिनी खे हिनजो मंताज़ लाइ छा इहो गानो ॿुधाए तुंहिंजी कावड़ में अकुर बि करे प्यार लाइ छा हूंदो इहो
0: इनशाला इनशाला महिरबानी मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा
1: ठीकु आहे
0: महिरबानी

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: आवाज अच्छे पे भाई जान,
1: शायद आवाज कट जी हुई है। बी कॉल ते केरा, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: साईं केर साहब है किथा का? केड़ा हाल है लखा डिना जुनेजा साहब? शुक्र अलहमदुल्ला साईं जा एहसान आहिनि, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि, बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे? अच्छा अच्छा, लख थोरा तव्हांजा, काफ़ी ज़माने खां तव्हांजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधोसीं, मोहबतूं तव्हांजो साईं। हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर हाज़ुर, इनशाला इनशाला ॾिसंदासीं। हाणे कॉल ते केरु, हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, यूनिस वकीला।
0: शुक्र अलहमदुल्ला, केर साहब है किथा का?
3: साईं मोहम्मद सलीम अहमदाणी, साबन दस्ती गोठ गाज़ी खान अहमदाणी का।
0: केड़ा हाल है अहमदाणी साहब, खुश आयो, ठीक आयो?
3: खैर, दुआ लॻी पई आहे, तव्हां ॿुधायो।
0: अलाह साईं जा एहसान आहिनि, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम तव्हांखे?
3: तमामु ख़ूबसूरत, तव्हांजे आवाज़ सां त चार न बल्कि अठ चंड था लॻी वञनि।
0: साईं चंडनि खे थोरो घटायो, कुझु माण्हू माना रोशनी जजी वधी वेंदी, मज़ो कोन ईंदो न। तव्हांजे ॻाल्हाइण सां जेको आवाज़ में मज़ो थो अचे, जेको वधीक ख़ूबसूरत रोशनी आहे न, उहो चार चंड न, हिकिड़ो चंड काफ़ी आहे।
3: वरी चार चंड असांजा आवाज़ जा त चार अव्हांजे आवाज़ जा बि।
0: अच्छा, माना मुक़ाबिलो आहे, सख़्तु मुक़ाबिलो। तव्हांजे गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? पुराणे ज़माने जूं ॻाल्हियूं आहिनि, सही ॻाल्हि आहे। अच्छा, अव्हां सां गॾु हींअर केरु पियो ॿुधे?
3: मूं सां गॾु ॿुधे पियो मुंहिंजो नंढड़ो पुट मोहम्मद सिद्दीक अहमदाणी।
0: जी जी।
3: अली गुलाम अहमदाणी ऐं उमर फारूक अहमदाणी।
0: अलाह साईं सभिनी खे ख़ुशि रखे, सदाई तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। फरमाइश पूरी न करे सघंदुसि, सबबु इहो आहे त मुंहिंजो टाइम पूरो थी वियो आहे शो मां, हू अञा हयाती जेसी आहियां तेसी तव्हां सां गॾु आहियां। वरी सुभाणे ई मुंहिंजो प्रोग्राम हूंदो 5 खां 7 वॻे ॿुधजो, ठीकु
3: आहे?
0: महिरबानी महिरबानी। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर साहब है किथा का?
4: सर चोर जमाली जिले सजावल का नाज मंगल खान जमाली।
0: चूहड़ जमाली जिले सजावल का नाज नंगर खान जमाली साहब, तां शाह यकीक बादशाह जे नगरी मां बुधो पिया, खुश आयो, ठीक आयो? शुक्र अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, अलाह साईं जा एहसान आहे।
4: तमामु सुठो प्रोग्राम करे पिया, तव्हांजी सॼी टीम खे, तव्हांखे बाबा ॾियो त ख़बर
0: हा। बसि महिरबानी असांजे भेनरुनि जूं जेके कालूं कनि थियूं, भाइरनि जूं जेके कालूं कनि था, ऐं जेके बर्दाश्त असां कनि था, अव्हांजी बर्दाश्त खे 100 सलाम।
4: सलाम तव्हांखे महिनत मोहबत ॾियो असांखे, तव्हांखे पहिरां शौक़ु न ॿुधो त असांखे तव्हांजो चारो, तव्हांजो महिनतूं ख़्वाहिशूं, तव्हांजी टीम असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, तव्हां रोज़ गुलाम लाइव कॉल हुजे।
0: रोज़ लाइव कॉल वठां, ठीकु आहे ठीकु आहे। ॿियो केरु तव्हां सां गॾु ॿुधे वियो?
4: मुंहिंजो दोस्त आहे दिलीप कुमार मेघवा थल पालक सां, रोस्तम अली पवर आहे, चूअर जमाली खां मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, गुलाम कादर जमाली, मेहताब अहमद जमाली, नज़ीर अहमद जमाली, मोहम्मद रमज़ान जमाली, नू अहमद जमाली, अब्दुल कज़ी खान जमाल, जेके ॿुधण में सभिनि खे नाज नंगर खां जमाल, पूरी टीम खे सलाम चयो, दुआऊं ॾियो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो।
0: वालेकुम अस्सलाम, मोहबतूं मिठा माण्हू, बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु आख़िरी लम्हा छो हुजनि दोस्त, आख़िरी टाइम आहिनि। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां? यूनिस चांडा साहब, ख़ुशि आयो? शुक्र अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे, तव्हांजी दुआ आहे। साईं अलाह साईं अवां ते बाज फरमाए, अलाह पाक असां सभिनी ते बाज फरमाए, असीं गुनहगार आहियूं, रब पाक जे अॻियां दुआगू आहियूं त अलाह साईं असांखे घुरण कोन थो अचे, रब पाक तोखे ॾियण अचे थो, असांजे मारुवड़नि ते मींहं वसाए त जीअं ख़ुशियूं अचनि। वठो नाला संगत या भले
5: पर बाबा चांदेवा अदनान चांदेवा अलादा चांदेवा ज्ञानदा चांदेवा
0: अल्लाह सही सबनी के खुश रखे आबाद जो मिठा मानो
5: ओके सर मेहरबानी
0: कुर बैठे सनासी कॉल ते के रहलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो आवाज अच्छी पियो हेलो
6: हेलो
0: जी केर पे गलायो हेलो आवाज अच्छी पियो हेलो अस्सलाम वालेकुम अदि गलायो खिलो ना मुझे टाइम खत्म थी वियो आ
6: हेलो
0: हेलो
6: वालेकुम सलाम
0: जी अदि केर किथे पे गलायो केड़े शहर का मटियारी का बुधो पे वेलकम तो चऊं भेण ताके वेलकम वेलकम भली करे आया आई अदि तमा से तमा पजे नालो बुधाण पसंद कंदा नालो कौन था बुधायो चलो ठीक है शो की तो लगे सुठो आ शो सुठो आ मेहरबानी भेण ता पहिरो दफो मुझे शो में शामिल थे वेलकम था चाहूं ता आगे ओके जनाब दिसाज हाणी कॉल ते के हेलो अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम सलाम सही बाबर चांडिया वाला निसर जावला खान
0: जी जी चांडिया साहब मेहरबानी ता पहिरी शायद कॉल कई भी है ना अच्छा तुम हाँ पे तुम जल्दी जल्दी अगर केर नाला बुधा वेटो छो तो मुझे मोकलाने जो टाइम थी वो बस बस ठीक है गानू तक बुधाई पे गौर से बुध ठीक मेहरबानी दिसासी कॉल से हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केर साहब किथा का साईं अलहमदुल्ला मुझी तबियत तव्हांजी दुआनि सां ठीक ठाक थी वई आहे शुक्र अल्लाह पाक जा करम आहिनि आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन
8: सर नाज फकीर मोहम्मद जलालाणी आरजे रेडियो नेटवर्क झोल
0: छा हाल आहे नाज साहब खुश आहियो ठीक आहियो
8: शुक्र है अल्लाह साईं जा एहसान तव्हां साईं ठीक आहियो खुश आहियो सभु ठीक आहे
0: अलहमदुल्ला वहां जी दुआ लॻी पई आहे
8: माशाल्लाह काफ़ी ॾींहनि खां पोइ तव्हांजा प्रोम थियनि पिया मूंखे बि हिकिड़े दोस्त ॿुधायो त तव्हां प्रोम पिया कयो छो त तव्हांजी तबियत बहितर कोन हुई इनकरे
0: तव्हांजा असल में कुझु वक़्त में जेको थींदो आहे जीअं तबियत दिलि जेका आहे न बेचई थी वई पोइ वरी नवां पलक बलक लॻाए हेॾा होॾा ट्यूनिंग थी वई दिलि जी हाणे वी आई पी थी वियासीं मां थोराए थो आहियां तव्हांजो साईं कुर्ब तव्हांजा तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे
8: साथी गॾु आहिनि कुर्बान अली ख़ासि कली झंडे मरी वारो मूंसां गॾु आहे चवन कुमार कोहली आहे ऐं गुलाम रहीम बलोच आहे या जेके दोस्त ॿुधनि था हिन वक़्तु मूंखे समाप्त फरमाइनि था सभिनी दोस्तनि लाइ मोहबतूं कुर्बतूं
0: किरोड़े कुर्ब किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तव्हांखे भली कार चवे थो मोहबतूं साईं ॾिसंदासीं त कॉल ते हाणे असां सां केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
9: वालेकुम असलाम छा हाल आहे
0: साईं अलहमदुल्ला केरु साहब ऐं किथां खां
9: साईं कश्मोर खां अॼु अली बख़्श ॻाल्हायां थो
0: कश्मोर खां
9: हाजी अली बख़्श
0: हाजी अली बख़्श साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अलाह साईं जा एहसान आहिनि अवां छो त आख़िरी लमात में शो में कॉल कई आहे त मां थोरो मुख़्तसर जल्दी पुछी वठां अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
9: हा
0: महिरबानी साईं लख थोरा तव्हांजा कश्मोर खां असांखे कॉल पहुती सॼी सिंध मां कॉलूं अचनि पियूं कॉलूं लातेदाद आहिनि पर कॉल्स सां गॾु गॾु तव्हांखे ॿुधायूं त मुंहिंजो हीउ शो सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ॿुधण न विसारजो जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमामु स्टूडियोस मां इनशाला अमीम चओ इनशाला छो त हयाती जो मेलो आहे न जे हयाती हूंदासीं त अवां जा आहियूं जे न रहियासीं त गलती गुस्ताखी माफ़ करे छॾियो। चङो यारो यारी मोकिलाए थो अव्हां खां अव्हां जो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमनि जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणजनि। अलाह निकेबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध असेंबलीअ जी अहम इजलास में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज़ बि सिंध जो विरहाङू न करे सघिया। वॾनि वॾनि तोब माण्हुनि इहो चयो, अवां नवनि सूबनि जो बहस छेड़े छॾियो आहे, पर सभिनी जो मुंहुं बंदि कराइण जो वाहिद हल असेंबलीअ में बहस कराइणु आहे। सिंध बाबति फ़ैसिलो का अदालत न कंदी, नई पिंडीअ में थींदड़ सेमिनारनि या जलसनि जलूसनि में फ़ैसिलो थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशह रहंदी।

सिंध असेंबलीअ में रथ पेश करण जो मक़सदु सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करणु आहे। सिंध जे अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो। सोशल मीडिया उन जो गवाह आहे। जिन खे हिन धरतीअ पनाह ॾिनी, उहे ई मादरे वतन ऐं माउ जो टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा ई कंदा। पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़े जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पीपल्स पार्टी मेंबर राजा रज़ाक बलो चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़, तहज़ीब ऐं सुञाणप आहे। सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुरिजे त जेसिताईं हिकु बि हिलाली पुट मौजूदु आहे त सिंध विरिहाइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि आकाउनि खे ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि। फॉर्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करणु न घुरिजे। खुरम करीम सूमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुट केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ बि तयारु आहियूं, पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरिहाइण न ॾींदासीं।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385699।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों आज ही रॉटन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 वगे तुकंदा छंछर आचर ते बगैर फीस के चेकअप किया वो याद रखा मरीजन के दवा स्टोर तक वी पवी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर की कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधन में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे की अल्सर मादे की जलन दिली जो वधन जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों सेहतमंद बनाए।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा जिससे हो पैदावार में इजाफा, उनको मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: KTN न्यूज़ भारत के पाकिस्तान से कैल सिंतास मुआहदे की पासदारी करने जो हुक्म दे छो। भारत के पन बिजली मनसूबन से भी कम रोकने जो हुक्म। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे बाबत आलमी सालसी अदालत के फैसले की आजियां कंदे है आलमी सालसी अदालत पंजे फैसले में अबूरी कदम जारी कया। अञा तफ़सीली फ़ैसिलो जारी नाहे कयो वियो। सिंतास मुआहदो ख़तम नाहे थियो ऐं नई उन जा ऑपरेशन मुअतल थिया आहिनि। भारत सिंतास मुआहदे ते मुकमल अमल दरामद जो पाबंद आहे। फ़ैसिले मूजिब भारत खे सिंतास मुआहदो मुअतल करण जी इजाज़त नाहे जॾहिं त आलमी कानूननि तहत बि भारत सिंतास मुआहदो मुअतल नथो करे सघे।

इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ इस्तनबुल में मक़ा दिफ़ाई मुआहिदे बाबति कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे परॾेही ऐं दिफ़ाई वज़ीरनि सां गॾु अस्करी क़यादत जी बि शिरकत। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जे हथियारबंद फ़ौजनि विच में हम आहंगी वधाइण, दिफ़ाई सनत में गॾियल पैदावार, तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ जे शोबनि में सहकार जो जाइज़ो वठण बाबति अहम फ़ैसिला। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त टे मुल्की इतिहाद आलमी कानून जी बुनियाद ते क़ाइमु आहे ऐं हीउ इतिहाद कंहिं मखसूस मुल्क ख़िलाफ़ु नाहे। इतिहाद जो ढांचो क़ाइमु करण जो अमल शुरू कयो वियो आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा।

0: इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किए और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस में पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले। कोई कोर्ट की फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता। फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना, उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली के अहम इजलास में नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ ते बहस। वे वजीर मुराद अली शाह अंग्रेज भी सिंध जो विरांगो न कर सकया। वडन वडन तोब मानुन यो चयो अवां नवन सूबन जो बहस छेड़े छो है, पर सभी जो मुंह बंद कराने जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराण है। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडी में थन्दड़ सेमिनार या जलसन जलूसन में फैसलो थन्द। जेस तई असा मां एक भी एम पी ए जिंदा आए, सिंध जो विरांगो न। सिंध एक है, हमेशा एक रही। कैंजी ख्वाहिश या तकरीर से सिंध जो विरांगो न। सिंध असेंबली के अजलास में यो फैसलो थो तो सिंध जो विरांगो कदें भी नींद, ही सिंध हमेशा रही।
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर।
4: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मज़ीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन एं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: इस सूबे को झंडे दिया और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले। कोई कोर्ट की फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता। फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला ये हाउस करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब मुंह बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या तालियां है कि ये सूबा हमेशा एक रहेगा सिंध, हमेशा एक रहेगा सिंध।
2: सिंध असेंबली के अहम इजलास में नवन सूबन इंतजामी यूनिट्स बाबत रित बहस। वे वजीर सैद मुराद अली शाह है तो अंग्रेज भी सिंध जो विरांगो न कर सकया। वडन वडन तोब मानुन यो चयो अवां नवन सूबन जो बहस छेड़े छो है पर सभी जो मुंह बंद कराने जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराण है। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडी में थींदड़ सेमिनार या जलसन जलूसन में फैसलो थींदो। जेस ताईं असां मां हिक बि एम पी ए ज़िंदा आहे सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध हिकु आहे, हमेशह हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशह रहंदी।

0: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो कि कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
1: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते? तुम्हारे वजूद है, हम ये कैसे मान सकते हैं, कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए? ऐसा कतन नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
2: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध के अवाम के सूरत हाल का आगाह करण है। सिंध की अवाम पैंजो रद्द अमल दे छो है, सोशल मीडिया उन जो गवाह है, जिनके इन धरती पनाह दिनी उहे ही मादरे वतन ए माओ जा टुकड़ा करण की गाल कर रहा है। सिंध के मुस्तकबिल जो फैसलो सिंध जो अवाम ए चूंडल नुमाइंदा कंदा। पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में खिताब। पीपल्स पार्टी मेंबर राजा रजाक बलोच चयो तो सिंध असां जो वजूद है, पंजी वजूद की विरासत किंजे था करे सकूं। सिंध एक तारीख, तहजीब ए सुणप है। सिंध की विरासत जो शोशो छड़ींदड़न के याद रखन घुर्जे तो जेस ताई एक बे हलाली पुट मौजूद है तो सिंध विरायजी न संगदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो तो पांजन आकाउंट के खुश करण लाए सिंध की विरांगे जो गालियों कोई पी वन। फॉरम 47 ते अचण वालन के इखलाकी तौर अड़ी गाल करण भी न घुर्जे। उरम करीम सुमरो चयो तो खबर पेजी वेंदी तो सिंध जो हलाली पुट केर है। असं गोलियों खाण लाए तैयार आयूं पर पंजी माओ सिंध के विरण न डींदासी। मोहसन नकवी केर थींदो आहे जेको सिंध जे विर्च करण वारो। असेंबलीअ में वेठल असां सभिनी खे इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे, हमेशह हिकु रहंदी, दुनिया जी का बि ताक़त उन खे विराए नथी सघे।
3: आज कहीं से कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या इंतजामी यूनिट के हवाले से उठ रही है, एन आइन के मुताबिक है। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, निसार घोड़ो साहब ने भी बताया, सर मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा, मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
4: मुझे सिर्फ इतना बताएं, जब इस सिंध में शहर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, तो इस सिंध में इंतजामी यूनिट क्यों नहीं हो सकते? इतनी फिक्र है सिंध की, इतनी फिक्र है, 22,000 अरब रुपए 18 साल में खा गए।
2: सिंध असेंबलीअ में नवन सूबन बाबत महमली रिथ पेश करण ते एमक्यू मेंबर्स निसार खोड़ो जा थोरा मञिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध ख़िलाफ़ु न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर हीउ कहिड़ो दलील आहे त इंतिज़ामी यूनिट्स छाणी न ॾींदासीं?
5: स्क्रेच करके देखेंगे, कैल्टिक्स हेवोलिन से जीतेंगे, मैकडॉनल्ड्स।
2: रिहान अक्रम चयो त नवनि सूबनि बाबति महमली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करण जो मौक़ो मिलियो आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो 1973 में आईन में नवनि सूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो हो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नवनि सूबनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। आदिल अस्करी चयो त सिंध जे विरांगे बाबति क़रारदाद आणण बदिरां पंहिंजे गवर्नेंस ठीकु कयो। सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था, हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ 5 वज़ीर हुजणु घुरिजनि। आमिर सिद्दीकी जो चवणो हो त को बि नथो चाहे त सिंध विरिहाइजे, पर अवां अवाम जा मसला हल नाहिनि कया। आम सिंधी माण्हू जी हालत कहिड़ी आहे? पंहिंजा महल ठाहे छॾिया अथऊं।

दहेक जी ट्रैकड़ी अदालत भारत के पाकिस्तान से कैल सिंध तौस मुआहदे की पासदारी करण जो हुक्म दे छो। भारत के पन बिजली मनसूबन से भी कम रोकने जो हुक्म। पाकिस्तान सिंध तौस मुआहदे बाबत आलमी ट्रैकड़ी अदालत के फैसले की आजियां कंदे चयो आहे त आलमी सालसी अदालत पंजे फैसले में अबूरी कदम जारी कया आहिन। अञा तफसीली फैसलो जारी नाहे कयो वियो। सिंध तौस मुआहदो खत्म नाहे थियो ऐं नई उन जा ऑपरेशन मुअत्तल थिया आहिन। भारत सिंध तौस मुआहदे ते मुकम्मल अमल दरामद जो पाबंद आहे। फैसले मूजिब भारत के सिंध तौस मुआहदो मुअत्तल करण की इजाज़त ही नाहे, जॾहिं त आलमी कानूननि तहत बि भारत सिंध तौस मुआहदो मुअत्तल नथो करे सघे।

इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम खे हथी ॾियण लाइ इस्तनबुल में मका दिफ़ाई मुआहिदे बाबति कमेटीअ जो पहिरियों इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे परॾेही ऐं दिफ़ाई वज़ीरनि सां गॾु अस्करी क़यादत जी बि शिरकत। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जे हथियारबंद फ़ौजनि विच में हमाहंगी वधाइण, दिफ़ाई सनत में गॾियल पैदावार, तहक़ीक़ ऐं तरक़ीअ जे शोबनि में सहकार जो जाइज़ो वठण बाद अहम फ़ैसिला। इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे तुर्किया जे परॾेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त टे मुल्की इतिहाद आलमी क़ानून जी बुनियाद ते क़ाइमु आहे ऐं हीउ इतिहाद कंहिं मखसूस मुल्क ख़िलाफ़ु नाहे। इतिहाद जो ढांचो क़ाइमु करण जो अमल शुरू कयो वियो आहे। इजलास में कयल फ़ैसिला नतीजा ॾींदड़ साबित थींदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं ईरानी सदर मसूद पशकियान विच में मुलाक़ात। बिश्केक में शंघाई तामन तनज़ीम जी सरबराही इजलास जे मौक़े ते थियल मुलाक़ात दौरान पाक ईरान बे तरफ़ां लाॻापन ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि ते सहकार समेत ताज़ी सूरत हाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि। बे तरफ़नि लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ऐं मज़बूत बणाइण जो बि अज़म।

कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते ॿीहर हमला। अमरीका जो ईरानी ॿेट लारक ते मेज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि ते वार। आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी ड्रोन पे तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगू विछाइण वारी कोशिश रोकण लाइ ईरानी लारक ॿेट ते हमिलो कयो आहे। पासदारान इनकलाब अमरीकी हमले जी तस्दीक कंदे चयो त अमरीकी हमले में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूदु अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मज़ मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे। ईरानी ॿेट लारक खे तबाह करे छॾियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरानी ॿेट लारक खे तबाह कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त ख़िते में बदमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिंजी बि मफ़ाद में नाहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मुहटो जवाबु ॾींदो।

0: एक तो सोशल मीडिया ने मेरा बात पक्की मंगनी शादी करवा दी है। मैं वाज़ह करूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही मैं किसी प्रिंसेस ग्लोरिया को जानता हूं। असल में ये सोशल मीडिया तमाशा असल इश्यू से अवाम का तवज्जो हटाने के लिए उछाले जाते हैं।
1: बिलावल भुट्टो सरदारी पंजी मंगनी वारन खबरों के रद्द कंदे समूरे ड्रामे के पिम्पसाने समेत असल मामलन तां ध्यान हटाने जी साजिश करार दे छड़ियो। बिलावल भुट्टो चयो तो सोशल मीडिया ते मुंजी मंगनी ए शादी भी कराए छड़ी, आऊं कहें भी शहजादी ग्लोरिया के नथो सुणाणा। सोशल मीडिया ते अड़ा तमाशा असल मसलन तां ध्यान हटाने लाए कया वेंदा आहिन।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमार्ट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारू जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514656 आई तौकीर अहमद 03616237।
5: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
6: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर

0: कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिये थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 0242460100।

0: चेयरमैन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा, मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछूं मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध ऐं वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चङो थो लॻे, मां हाणे ई थो वठी अचां।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर
6: 0300-338-5569।
7: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न अदा?
8: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
7: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: सिंध हमेशा एक रहेगा सिंध।
1: सिंध असेंबली जी नवन यूनिट बहस वे वजीर

0: डॉक्टर से तो पंजन आकाउन के खुश जे विरांगे जो गालन वारन और एड़ी गाल जे खुरम करीम सुमरो चो तो खबर गोलियों खाने ली।
1: जीएफएम आप सुन रहे थे जीएफएम केटीएन न्यूज।